FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:50 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे

0: मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकेंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूं हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यूं हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

धन्य है वो जननी, वो जनक और वो आंगन जहां ब्रह्मांड का नियंता भी शिशु रूप बाल लीलाएं करता है, अपने सुंदर रूप स्वरूप से सबको सुख प्रदान करता है और स्वयं भी आनंदित होता है।

भगवान राम की अभी वो अवस्था है कि चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। मेरा प्रयास है आपको कुछ इस तरह सुनाऊं कि आप उस सुंदर दृश्य की कल्पना कर सकें।

गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप की तुलना, सुंदर चेहरे की तुलना, सुंदर मुख की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कोई कभी होता तो शायद कह देता कि भगवान राम का मुख इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब का फूल है, या कमल का फूल है, या सूर्य है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के मुख से की जा सके। बहुत सोचा, अंत में हार के ये कह दिया कि भगवान राम का मुख इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का मुख है।

हे ईश्वर, सतपथ पर चलने वाले समस्त जनमानस को शक्ति प्रदान करने वाले केवल आप ही हैं। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार सभी के हृदयों में करुणा और मस्तिष्क में सद्बुद्धि बनाए रखिएगा।

जो समस्त संसार पर अपनी कृपा एक समान बरसाते हैं, ऐसे परम दयालु कृपानिधान को परम प्रणाम, कोटि कोटि जय।

आज की कार्यक्रम वंदना में आपने भक्ति रचनाओं को सुना, उन्हें स्वर प्रदान किया ललिता घोष, अनूप जरोटा, चंद्रु आत्मा, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल, और ये देशभक्ति परक गीत आपने सुना संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं भगवान महावीर वाणी से पाठ। आलेख और वाचन स्वर मधुर शास्त्री का है। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।

किसी जीव का मरना या जीना हिंसा या अहिंसा का रूप नहीं है। अयत्नाचार का नाम हिंसा और यत्नाचार का नाम अहिंसा है। रागादीन मनुप्पा अहिंसकत्व

राग द्वेष आदि का उत्पन्न न होना यही अहिंसा है। राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है। पादोसिय अधिकरणीय।

द्वेष करना, हिंसा के साधन ग्रहण करना, दुर्भावना से शरीर की क्रिया करना, दुख देने वाले कार्य करना, प्राणों अर्थात आयु, इंद्रिय, बल, श्वास का घात करना, इन पांच प्रकार के प्रयोगों को हिंसा की क्रिया कहते हैं।

करी सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है, इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। अहिंसा, त्रस और स्थावर सभी तरह के प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली है।

0: मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यदि मेरे कारण से जीवों को हानि होती है तो यह इस लोक और परलोक के लिए किंचित भी श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी नहीं है।
1: पाणि वह मुसावाद अदत्तमे

प्राणियों की हिंसा, मृषावाद अर्थात असत्य भाषण करना, अदत्त ग्रहण अर्थात चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पांचों से विरक्त होना, यही पांच प्रकार का चारित्र धर्म कहलाता है।

0: सज्जन, पृथ्वी पर विहार करते हुए किसी भी प्राणी को कभी भी पीड़ा नहीं देते। वे सभी जीवों पर वैसे ही दया भाव रखते हैं जैसे कि एक माता अपने पुत्र आदि पर वात्सल्य रखती है। जल चंदन ससे भूतावरमणि सहणसर्वाणाम न करन्ति कुणैजः अत्युज्जयम् हिद मधुर मिद वैणम्। पानी, चंदन, चंद्रमा, मोती और चंद्रकांत मणि भी उतना आनंद नहीं पहुंचाते जितना आनंद सार्थक, हितकर और मधुर वचन प्रदान करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रकाश किरण। भगवान महावीर वाणी से पाठ सुनवाया आपको हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आलेख और वाचन मधुर शास्त्री का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के प्रसंग को स्वर प्रदान किया है सुरेश वाडेकर ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। पशुओं का अफरा रोग, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। 7:31 का समय रहेगा ब्रजभाषा के कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी लोकगीतों को ब्रज लोक लहरी के अंतर्गत।

प्रातः 8:30 पर सुनेगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि और प्रातः 9 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कुछ भजन। कलाकार होंगे सुरेश वर्मा। सामयिक चर्चा का समय होगा प्रातः 9:15 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी की लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आबोहवा का समय होगा प्रातः 9:25 पर। आज आप सुनेगा तुलसी का दैनिक जीवन में महत्व विषय पर हमारा कार्यक्रम। आलेख और वाचन होगा आरपी गुप्ता का। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बाल गोपाल। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका और बच्चों में देशभक्ति की भावना। प्रातः 10 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम एक परिचर्चा, बच्चों का उग्र होता स्वभाव। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर रेखा चौहान, प्रीतम सिंह, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। इस परिचर्चा का संचालन करेंगे ओपी सिंह। समय याद रखिए प्रातः 10 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे दिन में 10:30 पर और कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में 11 बजे से। ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रमन लाल की गाई हुई कुछ मल्हारें दिन में 12:30 से।

0: दोपहर 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम इस मास का गीत। दोपहर 1:15 का समय होगा हमारे द्वारा सुनवाई जाने वाली झलकी गुलदस्ता का। आज इस झलकी के प्रस्तुति देंगे राजू सिंह और आलेख होगा हिना कौशिक का। दोपहर 1:30 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर होंगे हिंदी में समाचार और 2:30 पर कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का आप सुन सकेंगे। 3 बजे हमारी प्रथम सभा का समापन होगा। सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी 5:30 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात का विषय रहेगा काकोरी कांड की वर्सी और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे झलकी रमते राम। आलेख अजय नारायण गुप्ता का होगा, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की होगी। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय होगा 6:15 पर। आज आपको सुनवाएंगे उद्धव शतक सौ पाठ। संध्या वंदन कार्यक्रम लेकर आएंगे 6:30 पर। संध्या 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और बागवानी फसलों की खेती से आय बढ़ाने के उपाय। आज के ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनते हैं ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर और कार्यक्रम एक ही फिल्म से का समय होगा 8:30 का। हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन समय होगा 11:10 का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी दे रहे हैं पशुओं का अफरा रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: जुगाली करने वाले पशु द्वारा अधिक मात्रा में गीला हरा चारा खाने से उसके पेट में दूषित गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन तथा अमोनिया आदि गैसें एकत्रित होकर उसका पेट तान देती हैं, जिससे पशु बेचैन होने लगता है। इसी रोग

0: अफरा कहते हैं। रूमेन में हवा भर जाने के कारण फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। यदि इसका शीघ्र इलाज नहीं किया गया तो पशु मर भी जाता है। जब यह रोग तीव्र होता है तो गैस रूमेन में मौजूद भोजन पदार्थ में मिल जाती है। अफरा रोग पशु को एक साथ या धीरे धीरे होता है। अफरा होने के कारण हमें प्रमुख रूप से जब पशुओं को अधिक मात्रा में दाल वाले चारे दिए जाते हैं तो ये गैस उत्पन्न करते हैं। चारे की फसल जो कि ओस वर्षा आदि से भीग जाती है तो ये हानिकारक हो जाते हैं, और जो पशु सुबह ही चारागाह में चरने जाते हैं उनको भी अधिकतर अफरा हो जाता है। भूखे पशु को जब अचानक अधिक मात्रा में पेट भर के खलियान में अनाज खाने को मिल जाता है तो अधिकतर उस समय भी अफरा हो जाता है। जब पशु घर का बचा खाना जैसे कि दाल सब्जी रोटी आदि अधिक मात्रा में खा लेता है तो अभी उसको अफरा होने की संभावना रहती है। ग्रास नली में किसी चीज के फंस जाने के कारण या जुगाली करने में आपत्ति होने के कारण भी अफरा हो जाता है। पशुओं को अधिक समय तक सूखा खराब किस्म का चारा देते रहने के बाद अचानक ही हरा चारा देने पर वह अधिक खा लेता है तो इससे भी पेट उसका फूल जाता है। इस बीमारी का मुख्य जो लक्षण है रूमेन में गैस भर करके उसका फूल जाना है, जिससे कि बाईं ओर की कोख फूल करके ऊपर की ओर उठ जाती है। जब इस कोख को हाथ से थपथपाया जाता है तो ढोल की इसी आवाज इसमें से आती है। सांस लेने में पशुओं को परेशानी होती है, पशु बेचैन होने लगता है और खाना पीना छोड़ करके पशु जुगाली करना भी बंद कर देता है। पशु की आंखें तथा सिराएं उभरी हुई सी दिखाई देती हैं और उसका चेहरा बहुत ही दयनीय सा हो जाता है। उसके मुंह से लार गिरती है तथा जीभ बाहर निकल आती है। पशु बार बार उठता बैठता है, यानी कि उसको बेचैनी ज्यादा रहती है। सांस मुंह से उसकी चलने लगती है। वो गोबर और पेशाब करना भी बंद कर देता है और अंत में रोगी पशु एक करवट लेट करके गहरी और लंबी सांस लेने लगता है। यदि पशु के पेट की हवा नहीं निकाली गई तो कुछ ही घंटों में पशु मर भी जाता है। रोग की चिकित्सा में यह आवश्यक होता है कि गैस को पेट से बाहर निकाला जाए। गैस बाहर निकालने के लिए रूमेन में छेद करना पड़ता है। गैस निकालने के लिए बाईं कोख के बीचों बीच ट्रोकार कैनुला से छेद करके ट्रोकार को निकाल लेते हैं तथा कैनुला को जोंका तो उसमें लगा रहने देते हैं, जिससे कि गैस कैनुला के रास्ते बाहर निकल जाती है। रूमेन में खाद्य पदार्थों का फर्मेंटेशन रोकने के लिए दवा भी देनी पड़ती है, जिसमें टिंचर हींग 15 मिलीलीटर, स्प्रिट अमोनिया 15 मिलीलीटर, तारपीन का तेल 40 मिलीलीटर, अलसी का तेल 500 मिलीलीटर सबको मिलाकर के एक खुराक बना करके प्रौढ़ पशु को पिलाया जाता है। अफरा रोग का इलाज करने के लिए आवश्यक है कि पहले तो पेट में बनी हुई गैसों को बाहर निकाला जाए। इसके बाद पेट में ऐसी दवाएं पहुंचाई जाएं जिससे कि उसके जो फर्मेंटेशन हो रहा है उसको रोका जा सके, जिससे कि पशु को आराम मिल सके। इसके लिए टिंचर हींग और स्प्रिट अमोनिया है, तारपीन का तेल है, अलसी का तेल है जो कि अभी हमने आपको बताया, इसका जो मिश्रण बनाया जाता है और उसकी एक खुराक पशु को देना यानी कि पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे पशु को आराम मिलना शुरू हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयमुपक्रमः

प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोने की चिड़िया से। गीत को आवाज दी है आशा भोसले और तलत महमूद ने। शब्द रचना साहिर की और संगीत ओपी नैयर का।

बारिश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, चितलकर, फ्रांसिस वाज और साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत था सी रामचंद्र का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म गोदान से। गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने, शब्द रचना अनजान की, संगीत पंडित

0: आग फिल्म का ये गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूरे बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
1: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल में वाहन अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि, अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से सभी

0: शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
1: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट

0: के लिए तैयार है।
1: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन सेक्टर मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पुलिसकर्मी जोन रेंज जनपद थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधान भवन तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर देशभक्ति का संदेश देते हुए अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तिरंगा यात्रा के उपरांत मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज और बांसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कल आगरा में दो दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा,
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और खास तौर से हमारे युवा जिन प्रतिभा मैंने देखी ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
3: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, विशेषज्ञों ने अपने विचार देखे। इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा।
0: कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। स्कूल जाने वाले 12 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। ऐसे बच्चों को लाने ले जाने वाले हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट यानी परिचारक या परिचारिका रखना अनिवार्य होगा, जो बच्चों को वाहन में सुरक्षित चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह

0: इको एजुकेशन हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जन भागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का अनूठा मंच सिद्ध होगा।
1: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhD और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
2: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी। तत्काल AC लगाए जाने के निर्देश दिए, पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए। इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है। अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाए।
0: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब 16 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मऊ में स्वच्छ एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से पास बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI। केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि। अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 103
6: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनवे वाले सभी श्रोतान को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भैयाओं, आप सबन को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और आज रविवार हैवे के कारण आप सब सुनोगे अपने पसंद के लोकगीतन को ब्रज लोक लहरी में। लगातार संदेश मिल रहे हैं और अब नेकों देर ना करते भय सबसे पहले पढ़ें आपके संदेशन को। तो आज के कार्यक्रम में जो सबसे पहले संदेश प्राप्त भय हुए हमें जी, हमारे श्रोता अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश थे, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललताबाई भारतीय और न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल थे, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर शीता, डॉक्टर गीता शमनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश थे, अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, कोशाबाई भारतीय और इनके परिवारीजन। जी हमारे श्रोता हैं हिमांशी, आरना, क्रियांश, पवन और इनको समस्त परिवार मंडी रामदास मथुरा थे। हमारे जय श्रोता जुड़े हैं हम संग जी हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान ते, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और समस्त इनके साथी। जी हमारे श्रोता हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश ते, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ ते हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इनके संग हमारे एक और श्रोता जुड़े भये हैं जे हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा ते अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत और इनके संगी साथी। आओ सुने हैं आप सबकी पसंद पे सावन के जे झूला को और जय स्वर दीनो है सरस कॉल और साथी ने।

सरस कौल की स्वर में अभी आपने सुनो जा झूला को, और अब सुने हैं आपकी फरमाइश पे अगलो लोकगीत। लेकिन पहले समझ ले हैं, सुन ले हैं कि कौन से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं अपनी फरमाइश के संग। तो ये फरमाइश आई है खुर्जा उत्तर प्रदेश तेन तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा को, जिनके संग जुड़े भए हैं हमारे अगले श्रोता। ये हैं प्रदीप भैया बिरला नगर ग्वालियर ते। हमारे अगले श्रोता हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश कुमार सर्वत, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षिता और समस्त राजो राजे जाधव परिवार कालेगांव जाफराबाद ते। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ ते जुड़े भए हैं हमारे श्रोता हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। जे हवाई श्रोता हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव।

छत्तीसगढ़ ते दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति वर्मा, शिवांश वर्मा। इनके संग ही संग ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ते जशोता शामिल भये हमारे जय कार्यक्रम में। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछोर और जे श्रोता हैं ग्राम फरांसी जिला हिसार ते राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और समस्त इनके परिवारीजन। हमारे जे श्रोता हैं जसवंत नगर जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह, दिव्या नैतिक, संगीता, विपिन कुमार, कुमारी प्रीति, युवान और विहान, तो आप सबको सुनवावे हैं हमारो अगलो लोकगीत जय स्वर्दीनो है ओम प्रकाश डांगुर ने।

ओम प्रकाश डांगुर के सुर में अभी आपने सुनो जा लोकगीत को, और जाई लोकगीत को सुनवे के तय हमें फरमाइश भेजी है थी खुर्जा उत्तर प्रदेश ने तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। और अब सुने, अब देखें कि और कौन थे श्रोताओं के जो संदेश आए हुए हैं। जी हैं हमारे श्रोता नितिन गोला देवीपुरा मथुरा ते और इनके परिवारीजन, और जे हैं ग्राम गोपी की नगरियाँ ते मिठन लाल सारस्वत नेहा नीरज निकिता और इनके पापा मम्मी, ग्राम नगला पोला ते विजय सिंह भानु प्रताप सिंह रामानुज राधिका पवन करण नमन भोला डुगू और इनके परिवारीजन। जे हमारे श्रोता हैं ग्राम नौधरा ते कोमल मास्टर जोशोदा लाखन तरुण रोहित चंचल अंजना और इनके पापा मम्मी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर ते अजीत अमित शिवांश शिवांगी चुन्ना और पापा मम्मी इनके। इनके संग ही संग हमारे श्रोता जुड़े भए हैं श्रीराधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा ते शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी पुरंजय प्रजापति, कविता गोविंद सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार। जे संदेश आयो है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते राजेश शांपले पांडे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश को, और जिनके संग जुड़े भए हैं हमारे अगले श्रोता जे हैं पटेल नगर मलोट ते गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और गुड्डू। सादाबाद से जुड़े भए हैं श्रोता भूपिंदर प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति और इनके समस्त संगी साथी। दतरेंगी ते जुड़े भए हैं हमारे श्रोता भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और सगरे संगी साथी। वड़िंगखेड़ा पंजाब ते मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके सबरे संगी साथी। जे हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना को संदेश शामिल भयो, और जिनको जे संदेशों प्राप्त भयो MLB रोड ग्वालियर ते। जी हमारे श्रोता हैं शैलेंद्र प्रजापति लोहेट खुर्द सादाबाद ते, और जी हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश ते, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह और मंगलावेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आप सबन को संदेश शामिल भयो और आप सुनवावे आपके पसंद के लोकगीत को जे संवेद स्वर में।

अभी आपने सुनो संवेद स्वर में जालो गीत को, और जल्दी से शामिल करें आप सबकी फरमाइश को। तो जे फरमाइश आई भई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ते महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी टिंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी को। जी हमारे श्रोता हैं एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश ते, बीपी गौतम, सरिता गौतम और इनके परिवारीजन। जी हमारे श्रोता हैं सत्यवीर सिंह, मीरा सिंह, राजेश, आरती, रजनीश, राखी तुलसी, राहुल, वर्षिता, गर्वित, कनिष्का गौतम, हम जरीपुरा हाथरस ते, इनको जो संदेश प्राप्त भयो। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल और इनके परिवारीजन। जे श्रोता हैं उमा शर्मा, उर्मिला शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौलीप्याओ मथुरा ते, और गुजरात गांधी ग्राम ते जे संदेश प्राप्त भयो प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी को। जी हमारे श्रोता हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्नी लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और समस्त परिवार गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। जी श्रोता हैं डोंगरपुर डोंगर गांव राज नांद गांव छत्तीसगढ़ ते राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये और इनके परिवारीजन। ये श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और समस्त परिवारीजन लोहगढ़ ठाकुरांवाला ते, इनको जो संदेश प्राप्त भयो है। और ये श्रोता हैं हमारे जा कार्यक्रम में रिंगनी छत्तीसगढ़ ते दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवारीजन। चिंकल अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल और पीहू अग्रवाल यमुना पार मथुरा तेजे संदेश भेज रहे हैं। और अब सुनवावे आपके संदेश पर जे लोकगीत जय स्वर्दी रो है कल्पना एस बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजमाधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
1: अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31

0: स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर

0: दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप

0: और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में आपने सुना आपकी परछाइयां फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लव स्टोरी इस फिल्म के लिए आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञा होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94122255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा कल सोमवार 10 अगस्त 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वरों में आपने सुना लकी फिल्म का ये नगमा। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम? टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमन एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन। इन भक्ति रचनाओं को स्वर दिया है सुरेश शर्मा ने, क्षमा कीजिए सुरेश वर्मा ने। आइए सुने इन्हीं के स्वर में ये पहली रचना।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सुरेश वर्मा। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में की अगली रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये स्वर सुरेश वर्मा का, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: शब्द नहीं बल्कि भारत की आजादी की उस अमर गूंज का नाम है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। यही वो उद्घोष था जिसे बुलंद करते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक मुस्कुराते हुए पहुंचे। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां और गोलियां झेली और लाखों देशवासियों ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये विधेयक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आज इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शैलेन जी।
0: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की जो पहल की गई है, इतिहास और वर्तमान सामाजिक संदर्भ में आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती?
1: देखिए शैलेन जी, आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम कानूनी रूप से किसी चीज को ले आते हैं तो वो भले ही कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पर डाली गई है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करते करते वो हमारे आदतों में, हमारे स्वभाव में कब शामिल हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं

0: और मेट्रो स्टेशन से ही जुड़ा हुआ बहुत सारे स्टेशन है। दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन की मैं बात करता हूँ। मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं उस पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है या कहीं इधर उधर ना थूके। वही जनता जब जाती है, रेलवे स्टेशन है अपना इंडियन रेलवे का, वहां पे ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं उस स्वभाव के उसमें है उनके कि बंदिश नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो थूकना शुरू कर देते। तो कई बार होता क्या कि हम जब अनुशासनात्मक रूप से किसी चीज को लेते हैं, कोई चीज हमारे ऊपर व्यवस्था के रूप में डाली जाती है, तो हमारे स्वभाव में आ जाती है। चूंकि वंदे मातरम कोई सामान्य दो शब्द नहीं है, अगर हम बात करें इतिहास की तो आप कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन बंकिम चंद्र जी ने जब इसको लिखा है तो उसमें बंगाली भी है और संस्कृत भी है। तो ये प्योर संस्कृत भाषा का भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, प्योर बंगाली भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो जब इसका उत्तर आप अपने अंतर्मन में तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे भारत में रहने वाले लोगों की हृदय भाषा का शब्द है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, तो ये पूरा जो देश है, इस देश में रहने वाले विभिन्न जो भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न पहनावों के साथ जुड़े हुए, विभिन्न खान पान के साथ जुड़े हुए, वो इस पूरी मातृभूमि को एक देवी स्वरूप में मानकर, अपनी मातृभूमि मानकर इसकी आराधना करते हैं, इसका वंदन करते हैं। उसको ये अभिव्यक्त करने वाले दो शब्द हैं वंदे मातरम। और इसने न केवल हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संबल दिया है, वरन आजादी के लिए जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय भी इन दो शब्दों ने हमको इतना प्रेरित किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा उदाहरण किसी कालखंड में आपको नहीं मिलेगा जब किन्हीं दो शब्दों ने इतना प्रभावित किया हो इतने बड़े जनमानस को, इतनी बड़ी जनसंख्या को।
1: आजादी का गान
0: जी, बिल्कुल आजादी का गान बन गया। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम व्यवस्था के रूप में किसी चीज को दे देते हैं तो उसको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, इसका किसी तरह से अपमान नहीं होने देना है,
1: हमारे व्यवहार में शामिल,
0: व्यवहार में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिकता भी उसके अंदर आएगी, ऐतिहासिक रूप से जो इसका महत्व था उससे भी वो जुड़ पाएगी।
1: सर बिल्कुल, आपने उसके ऐतिहासिक बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान जनगणमन के समान कानूनी संरक्षण देने का संदेश क्या गया है हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए, आखिर कितना जरूरी था?
0: देखिए सैलन जी, भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रगान आदि के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है, कुछ अनुच्छेद है उससे संबंध में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत देश में रहने वाले प्रत्येक वासी को, अगर वो नागरिक नहीं भी है, कहीं बाहर से भी आया है और भारत में रह रहा है, तो उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। तो ये जो जनगणमन हमारा राष्ट्रगान है, तो वो तो चूंकि जब हमारा संविधान बना तो एक व्यवस्था के रूप में उसी समय संविधान में ये चीजें लागू कर दी, लेकिन वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक अवचेतना का तो बहुत बड़ा मानदंड था, लेकिन उस सांस्कृतिक अवचेतना के जो ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, तो उसमें हुआ क्या कि बाद के दिनों में जब आजादी का जो हम आंदोलन जो हमारा चला, 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए, उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल पहले, कुछ दुर्भाग्यवश तुष्टिकरण का एक ऐसा दौर चला हमारे कि जिसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी बातें राजनीति में हमारे शामिल हो गईं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजहब के नाम पर हमारा देश बटा, दो टुकड़े हो गए इसके, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण बनते चले गए कि एक तुष्टिकरण का भाव कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कहीं मजबूरी में और कहीं स्वार्थवश इसको लाया गया। तो उसी तुष्टिकरण के चलते वंदे मातरम को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देर से ही सही हमारी जो सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी जो अभी वर्तमान में संसद है उसमें बैठे माननीयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इस भाव को समझा कि जो महत्व राष्ट्रगान का हमारे लिए है वैसा ही महत्व, चूंकि ये राष्ट्र को जोड़ने के दो शब्द हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने का गान है, और इसको जब तक हम वही मान, वही दर्जा नहीं देंगे जो जनगणमन को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही जो सांस्कृतिक, हमारी जो विरासत है उसके साथ हम अन्याय करेंगे।
1: स्तर पर भी अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में जब भारत में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की अब ये पहल की गई है, ये अलग अलग वर्गों में किस तरह से प्रभावी होगी और आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं?
0: बिल्कुल सलीन जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एशियाई देशों में अगर हम देखें तो जापान एक बहुत प्रखर राष्ट्रीयता का देश है। हम लोग कहते हैं कि जब जापान में बच्चे से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, तो आमतौर पर उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीएस, जैसे हमारे आमतौर पर बच्चे कई बार बोलते हैं, वहां नहीं है। वहां एक सामान्य उत्तर होता है कि हमको अच्छा जापानीज बनना है। तो एक राष्ट्रीयता भाव का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जापान का, और वहां पे कानून के जरिए जैसे अभी व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, इसी तरह कानून के जरिए वहां के राष्ट्रीय प्रतीकों, वहां के राष्ट्रगान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसका मान होता रहे, उसके मान में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी तरह का अपमान न हो वहां। ऐसे ही चले जाइए आप, कतर है, सऊदी अरब है, यूरोपीय देशों में जाएंगे तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कई उदाहरण हमारे सामने ये देखने में आते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके संरक्षण के लिए

कानूनी प्रावधान किए गए हैं और ये प्रावधान भारत में थोड़ा इसलिए जरूरी है कि देखिए भारत बहुत ही ज्यादा विविधता है सांस्कृतिक रूप से, यहाँ पे भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता है, विचारों में भी बड़ी विविधता है और ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति को इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो एकता होती है वो उसी एकता का ही वास्तव में विशिष्ट रूप विविधता होती है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो जो द्वैतों में विशिष्ट है वो अद्वैत है, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता

0: इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, तो वो उसका प्रयास हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने अनादिकाल से किया है। तो इस विविध देश में जो लोग रहते हैं, सबके मन में हमारे इस राष्ट्रगान के प्रति, हमारे वंदे मातरम गीत के प्रति समान भाव जागृत हो पाए और समान रूप से हम उसका सम्मान कर सकें, आने वाली पीढ़ियां भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि चीजों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण गीत को आत्मसात कर सकें, इसके लिए मैं समझता हूं एक व्यवस्था देने की जरूरत थी और वो संसद ने की।
1: सर, चर्चा के शुरुआत में आपने वंदे मातरम की ऐतिहासिकता को लेकर बात की थी, तो सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वंदे मातरम की रचना किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार नई ऊर्जा दी थी।
0: जी सलन जी, आप चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं और प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूं इतिहास का विद्यार्थी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ना। हम अपने मूल को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। देखिए 1870 का दशक था, उसमें एक प्रावधान लागू किया गया। थोड़ा सा और पहले जाएं तो 1857 का गदर कहते हैं जिसको, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, वो असफल हो गया। और उसकी असफलता ने जो राष्ट्रीय भाव से भारत के लिए काम करने वाले लोग थे उनके मन में बड़ी गहरी निराशा बैठ गई। ऐसे में एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी और वो घटना घटी रानी विक्टोरिया के सम्मान में, उनके सम्मान को किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक कानूनन जामा पहनाया जाए इसका प्रावधान करते हुए एक व्यवस्था 1876 ईस्वी में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय गॉड सेव द क्वीन करके
1: विक्टोरिया का,
0: हाँ जी, विक्टोरिया के लिए। तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हेरार्की थी उसमें काम कर रहे थे और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट देशभक्त से परिपूर्ण गीत की रचना की और 1878 के आसपास में यह गीत उनके द्वारा लिखा गया। 1882 में एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक उन्होंने उपन्यास लिखा, आनंद मठ, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया इस गीत को। उससे पहले गीत को स्वतंत्र रूप में वो लिख चुके थे लेकिन उस उपन्यास में, जी जी, गीत तो प्रकाशित हो चुका था। 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ प्रकाशित हुई तो उसमें गीत पूरा प्रकाशित हुआ और उसमें एक सन्यासी है जिसके मुंह से इन्होंने इसको गवाया है, वो सन्यासी गाता है, पात्र है उस,
1: वो अंग्रेजों के खिलाफ
0: जी,
1: जो
0: जी,
1: समय
0: जी,
1: काल
0: सन्यासी
1: और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो शोषण व्यवस्था थी, कह लीजिए जमींदारी व्यवस्था से पनपी और उसके मूल में ब्रिटिश शासन था, तो वहां से ये शुरुआत होती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माँ हमारी पृथ्वी है और उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ तो भगवान राम ने जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है, वो वैदिक काल से है, वो रामायण काल में मिलती है, आगे के समय में निरंतर उसका प्रवाह हम देखते हैं। ये जो भूगोल है, हम जिसको हम विश्व के मानचित्र पे खाली भौगोलिक नक्शा नहीं है भारत देश, भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये भूमि का टुकड़ा के रूप में नहीं देखता है, वो मातृभूमि के रूप में देखता है। और जो भी व्यक्ति उस समय इस चीज को जी रहा था, इस चीज को महसूस कर रहा था, उसके मन में अपार पीड़ा थी, इस गीत ने इतना संबल दिया। इस गीत को जब आप सुनेंगे, मैं अपने श्रोताओं से निवेदन भी करूंगा कि आज तो गूगल का जमाना है, आप उस पर डालेंगे तो हिंदी अर्थ सहित उसका अनुवाद आपको मिलेगा, आप उसको पढ़िए, उसका भाव देखिए, उसको सुनिए, सुनिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने भावपूर्ण मुद्रा में इसको सुन लिया रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था उसमें एक कविवर करके थे, कविराज की उपाधि उनकी, उन्होंने ये गीत गाया था और वो 1896 में इसको स्वरबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। आगे चलकर देखते देखते देखते देखते अठभंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें तो ये गीत प्रेरणा स्रोत बन गया। मैडम भीखा जी कामा जिन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज अपना फहराया था उस पर वंदे मातरम छपा हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, आपने उन्होंने किया वंदे मातरम। अरे वो वंदे मातरम मंत्र बन गया कि आप ये समझिए 22 साल में जो आंदोलन हुआ अठभंग भंग विरोध के क्रम में, तो 1806 ईस्वी में 22 साल में एक बड़ा एक पदयात्रा निकली और उस पदयात्रा में जो ही वंदे मातरम उद्घोष शुरू हुआ और देखते देखते ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना, अंग्रेज सरकार घबरा गई। आपने नाम सुना होगा एक टाउन हॉल था कलकत्ता में, वहां 30,000 लोग इकट्ठा हुए बंग भंग में और 30,000 लोगों ने इसका सामूहिक गान किया। लोग बताते हैं कि वहां सुनने वाले मतलब हजारों लोग रो रहे थे। तो ये जो गीत है वो मैंने कहा ना, ये कोई ऐसे साधारण सी पंक्तियां नहीं है, ये हमारे भाव में उतरा हुआ है, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति, जो हमारा आदर है, जो सम्मान है, वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है। और मैं समझता हूं इस गीत को इसके ऐतिहासिक

0: निरपेक्ष के साथ जब आप देखते हैं तो बहुत पहले इस गीत को कायदे से संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक व्यवस्था वैसे ही इस गीत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्य या कुछ
1: संविधान सभा की बैठक हुई सर 50 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलने की प्रक्रिया को आगे किया जाए।
0: जी बिल्कुल, वहां भी वही जो राजनीतिक विमर्श जब हुआ वहां पे, तो वहां पे कुछ जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बना चुका था, लेकिन फिर भी अभी मुस्लिम लीग के कुछ नेता यहां थे, कुछ उस समय के और भी नेता ऐसे थे जो सोकाल धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वो धर्मनिरपेक्षता की उस भाषा में इस गीत में कोई आपत्ति हो सकती थी। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, इसके दो अंतरा तो चल सकते हैं, लेकिन बाकी के तीन अंतरा वो माँ दुर्गा की स्तुति जैसा है, उसमें साक्षात उनका नाम दिया है, उनके स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते, या देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इसको मूर्ति पूजा के रूप में देखेगा और उसके लिए आपत्तिजनक है, और यह कहकर इस गीत का थोड़ा कह लीजिए महत्व राजनीतिक रूप से जानबूझ के या अनजाने में कम कर दिया गया, जो मैं समझता हूं कि थोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य
1: है। अब राष्ट्रीय एकता की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात है, उस लिहाज से और उस दिशा में वंदे मातरम वर्तमान परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें।
0: देखिए अभी जो भारत देश है हमारा वो युवाओं का देश है, अभी आपने कहा, और आने वाला समय युवाओं का है, और मैं केवल आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी देश की दशा और दिशा है वो युवा ही तय करते हैं, और जब युवा वर्ग में मातृभूमि से जुड़ा हुआ भाव विकसित हो जाएगा और इस भारत देश को वो मातृभूमि के रूप में देख के सेवा करेगा, किसी भी क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में वंदे मातरम का भाव जागृत करना युवाओं में बहुत जरूरी, तो मैं समझता हूं समसामयिक रूप से भी देखा जाए या आने वाले किसी भी समय में मातृभूमि के प्रति वंदना, मातृभूमि के प्रति आराधना, मातृभूमि के वंदन, इसका तो मैं समझता हूं कि कभी ये कालातीत नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा बने रहना चाहिए, और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर युवा पीढ़ी में इसका भाव जागृत होता है तो ये स्वागत करने वाली बात है।
1: बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी। सर आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जय नारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं सुनंदा अग्रवाल।

बच्चों जय हिंद। बच्चों रविवार का दिन फिर से आ गया है और मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म और हमारा भी। तो बच्चों अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आजकल का मौसम बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आजकल चल रहा है सावन का मौसम, यानी कि बारिश का मौसम। सावन में भोले बाबा की पूजा तो करी ही जाती है, साथ में बारिश भी होती है, तो आप सबको कितना मज़ा आता होगा। जब मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं बारिश में गर्मा गर्म, तो आपको खाने में कितना अच्छा लगता होगा। स्कूल में कभी कभी रेनी डे भी हो जाता है, तो आपको और मस्ती सोचती होगी कि आज तो छुट्टी हो गई, हम मज़े करते हैं, घर में मस्ती करते हैं। तो बच्चों आप बारिश ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, मज़ा करते रहिए बारिश में, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा बारिश में नहाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए बारिश में मस्ती के साथ साथ। बच्चों इसी बारिश की बातों के साथ हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं।

0: पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका। बच्चों की भूमिका बहुत अहम होती है। आप बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आप बच्चे छोटे-छोटे कदम उठाकर, जैसे पौधे लगाकर, पानी और बिजली को बचाकर, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करके आप प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप पौधे लगाएंगे अगर, तो पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे, आप उनको खाद देंगे, पानी देंगे, जब वो बड़े होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी देंगे, फल देंगे, फूल देंगे और छाया देंगे। जब वो हमें इतनी चीज़ें दे सकते हैं, तो क्या हम अपने फायदे के लिए पौधों को नहीं लगा सकते? इसलिए कहती हूँ आपको पौधों को लगाना चाहिए। दूसरी बात, आपको पानी की भी बचत करनी चाहिए। जैसे आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही ग्लास में लीजिए, फालतू वेस्ट ना करें। और जब तक, जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं, तो कोई बच्चे होते हैं कि नल को खुला छोड़ देते हैं, या बड़े भी होते हैं जो नल को खुला चला छोड़ देते हैं जब तक ब्रश करते हैं। जब आप ब्रश करें, जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है उतना ही आप इस्तेमाल करें, बाकी के टाइम नल को बंद रखें, जिससे होगी पानी की बचत। नहाते टाइम भी हम जितना पानी इस्तेमाल हो उतना करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे तो वो पानी की वेस्टेज होगी। और बच्चों, ऐसे ही हम किचन में भी अगर घर के कामों में पानी की बचत कर सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि मम्मी, दादी या घर में कोई भी बड़ा घर में अगर ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहा है, तो आप उन्हें भी समझा सकते हैं कि पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। और बच्चों, जैसे हम पानी की बचत कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं बिजली की। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, उसी में ही जब पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, जब तक आप बैठे हैं तब तक यूज़ करें। जब आप उठ के आएँ उस कमरे से, तो उस बिजली को, यानी पंखे और लाइट को चलाना छोड़ें और उसको बंद करके ही कमरे से बाहर निकलें। और बच्चों, प्लास्टिक का प्रयोग भी बंद करें। बाजार से कुछ सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तो प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करते हैं। आप कोशिश करें कि आप जब भी घर से जाएं, या आपके घर बड़े भी घर से जाएं अगर कुछ सामान लेने के लिए, तो आप उनको बोलें या आप खुद करें ये काम, कि आप कागज़ का बैग या कपड़े का बैग लेके जाएं, प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों से आप प्रकृति को सुरक्षित और सुंदर रख सकते हैं। बच्चों, अपने परिवार वालों और समाज को भी आप जागरूक कर सकते हैं कि बच्चों, आपकी अब मैं बातें बताऊंगी, जैसे पेड़ लगाकर घर में और स्कूलों में आप आसपास में पौधे लगा सकते हैं बहुत सारे। जल की बचत कर सकते हैं, नल बंद करके एक्स्ट्रा चल रहा है तो। बिजली में कमरे में जितने वक्त के लिए आपको चाहिए आप बैठे हो, उतने वक्त के लिए ही पंखा चलाना है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, कागज़ के थैले का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें समाज को बदलने में और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षण करने में बहुत मदद करते हैं। बच्चों, आप कचरे को गीले कूड़ेदान में और सूखे कचरे को सूखे कूड़ेदान में डालें। और बच्चों, आप अच्छे से अपने माता पिता को भी पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने को कह सकते हैं। तो बच्चों, मैंने इतनी सारी बातें पर्यावरण संरक्षण पर आपको बताई। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से इन बातों को मानेंगे भी। तभी तो मैं कह सकती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण में आप बच्चों की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि आप बच्चे ही घर में भी, आस पड़ोस में, समाज में सबको बोल सकते हैं कि आप पानी फालतू ना फैलाएं, आप पौधे लगाएं। घर में अगर किसी का जन्मदिन है, तो अपने हर जन्मदिन पे वो एक पौधा लगाए, तो इससे कितने सारे पौधे हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण कितना सुरक्षित और साफ दिखेगा। तो बच्चों, इन्हीं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कौन सा बच्चा हमसे बातें करेगा और क्या बातें करेगा।
1: नमस्ते दीदी, मेरा नाम मोही है। मैं आज आपको सावन के बारे में बताऊंगी। जैसे ही सावन आता है, 15 अगस्त और बहुत सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं, और जब सावन आता है तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी, झूला प्लीज डाल दो। और आपको पता है दीदी, जब तक सावन शुरू होता है, फिर जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम झूला उतारते नहीं है। फिर मैं सावन में खूब झूलती हूँ, और मैंने तो भगवान जी के लिए भी झूला लगा दिया है। सबसे पहले जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं मम्मी के साथ दर्शन करने जाती हूँ, शिव जी के, बिहारी जी।

0: जन्मभूमि के, द्वारकाधीश के, और भी बहुत सारे मंदिरों के। और मुझे सबसे ज्यादा काली घटाएं सबसे ज्यादा पसंद आती है। सावन में तो घेवर भी आता है और मुझे घेवर खाना तो बहुत पसंद है। धन्यवाद दीदी, आपका दिन शुभ हो।
1: अरे वाह, मोही ने हमें सावन के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और भगवान जी के, कान्हा जी के सावन के झूले के बारे में बताया। तो चलिए आगे चलते हैं और सुनते हैं कि कौन सा बच्चा हमसे क्या बातें करने वाला है। और
2: राधे राधे, जय श्री सावित्री, हर हर महादेव। दीदी आप कैसी हो? बारिश का मौसम चल रहा है, ये महीना तो सावन का है, और आपको पता ही है सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा होती है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यह सावन का महीना। आपको पता है दीदी, इस बार हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का दिन है। हमारा देश सदियों की गुलामी से मुक्त हुआ था। यह आज़ादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उनके नाम थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े देशभक्त शामिल थे, जिसमें से एक और थे, उनका नाम था श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष ने बहुत संघर्ष और त्याग किए थे देश के लिए। उनका आश्रम बड़ौदा में है। कुछ साल पहले उनके नाम से 2 रुपए के सिक्के भी चलते थे। वो बहुत बड़े देशभक्त थे। मेरी बिल्डिंग में भी झंडा लहराया जाता है और छोटा सा प्रोग्राम भी होता है। कुछ लोग देशभक्ति गीत गाते हैं, कुछ डांस भी करते हैं। और अब मैं आपको हरियाली तीज के बारे में बताने वाली हूँ। इस दिन सब लड़कियाँ हरी हरी चूड़ियाँ और हरे हरे कपड़े पहन के तैयार होती हैं। फिर सब मिलकर झूला झूलने जाती हैं। मेरी मम्मी तो पूरी सब्जी और खीर बनाती हैं। इस दिन घेवर फैनी भी खाते हैं, बहुत मज़े करते हैं सब। दीदी, मुझे झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है, मेहंदी लगाने में बहुत मज़ा आता है। आपको आता है मज़ा? चलो दीदी, अब मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैं अभी के लिए जा रही हूँ। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।
1: अरे वाह, आपने हमें सावन के ऊपर, 15 अगस्त के ऊपर, हरियाली तीज के ऊपर इतनी सारी बातें बताई हैं। तो चलिए अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप बच्चों में देशभक्ति की भावना का जागरूक होना, बच्चों अपने देश, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ना होता है। देशभक्ति के प्रति भावुक होना, यह भावना आप बच्चों के अंदर उनकी पहचान, अपनेपन को मजबूत करती है, जिससे आप आगे चलकर एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। और बच्चों, आपने महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी होंगी। और बच्चों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों, राष्ट्रीय त्योहारों में बच्चों आप लोग शामिल तो होते ही हैं, जैसे स्कूल में, आपके कॉलेजों में झंडा फहराया जाता है इस दिन। और बच्चों, गंदगी ना करें, पेड़ पौधे लगाएं, साफ सफाई रखें अपने देश में। जितनी आप साफ सफाई रखेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, अपने देश को हरा भरा, स्वच्छ और साफ बनाएंगे, ऐसे कार्य करके भी आप देश के प्रति जागरूक हो सकते हैं और आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। और बड़ों का आदर सम्मान करके आप बच्चे किसी से झगड़ा ना करके मिलजुल कर एकता के साथ अगर आप रहेंगे, तो इस तरीके से भी आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपने देश के प्रति। तो बच्चों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आप पौधे लगाइए, साफ सफाई रखिए।

सबसे मिलजुल कर रही है। तो आप जितने भी वीर सेनानी रहे हैं उन सबको अच्छे से सैल्यूट कर सकते हैं, उनकी ऐसी यादों को ताज़ा करके आप उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा ले सकते हैं और अपने देश को स्वच्छ, साफ और सुरक्षित बनाना आपके हाथ में है। तो चलिए बच्चों, अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बच्चों आपने अभी अभी देशभक्ति का गीत भी सुन लिया, नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ। तो चलिए बच्चों, आपने गीत सुन लिया है देशभक्ति का, तो आपको अब देशभक्ति के बारे में एक और स्पेशल डेज के बारे में बता देते हैं, जो कि है 15 अगस्त। बच्चों स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। बच्चों भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। यह हमारा बहुत ही खास राष्ट्रीय त्यौहार है। इस ऐतिहासिक देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इस शुभ अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। सभी स्कूलों और कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है। इस दिन पूरे देश में देशभक्ति गीत बजाए जाते हैं और लोग खुशी मनाते हैं। इस दिन हमें देश के प्रति एकता और प्रेम का संदेश देता है। और बच्चों इस पावन पर्व पर लोग एक दूसरे को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। यह राष्ट्रीय अवकाश का दिन होता है जिस पर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर छुट्टी होती है, यानी कि बंद होते हैं। हमें अपनी इस अनमोल आज़ादी की हमेशा रक्षा करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। और बच्चों इतनी सारी देश की यानी 15 अगस्त की बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको सुनवा देती हूँ वार्ता। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान। वार्ताकार हैं दीन बंधु समाध्या।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ है, किंतु वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपनी बुद्धि और विवेक से मोह भंग हो गया है, क्योंकि वह वही कार्य करने लगा है जो कि उसको

और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशाप साबित होगा और उसके लिए इसको सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्राकृतिक संपदा व प्रकृति के साथ खेल रहा है, उससे छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण वर्तमान समय में उसके सामने पर्यावरण प्रदूषण जैसी विकराल समस्या मुंह खोले खड़ी है। प्रकृति हमारा अपना घर होती है जिसमें हम निवास करते हैं, इसलिए इसमें निवास करने वाले प्रत्येक जीव को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में आदि काल से ही प्रकृति की पूजा किसी न किसी रूप में करते रहे हैं, जैसे सूर्य व चंद्रमा की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, केला आम आदि वृक्षों की पूजा, फूल पत्तियों की पूजा, तुलसी के पौधे की पूजा, कुएं की पूजा, नदियों व सागर की पूजा इत्यादि। पर्यावरण के अनेक अंग हैं, वहीं दूसरी ओर मानव प्रकृति का शोषण भी बड़ी बेरहमी से करता जा रहा है। मनुष्य अपने भौतिक लाभ के लिए बिना सोचे समझे प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव के दिल में कोई रहम नहीं रह गया है, वह बेदर्दी से इसका दोहन करता जा रहा है। वर्तमान समय में मानव अपने निहित स्वार्थवश पर्यावरण को दिनों दिन नष्ट करता चला जा रहा है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि इसमें सांस लेना भी दूभर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा पर्यावरण देकर जाएंगे जो कि पूर्णतः दूषित होगा और वह इस सब के लिए सीधा सीधा हम लोगों को ही जिम्मेदार व दोषी ठहराएंगे। और वास्तव में यह अपने आप में सही होगा, जिसको हम नकार नहीं सकेंगे, क्योंकि आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और यदि हम सब चाहें तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं तथा हम अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण बना सकते हैं, जो कि समाज व राष्ट्र व स्वयं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कुछ आवश्यक कदम उठाएं तथा उन्हें व्यावहारिक जीवन में एक आदत बना लें तो निश्चय ही पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है तथा भविष्य में आने वाली एक भयंकर कष्टकारी समस्या को रोका जा सकता है। इसी तरह देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण प्रदूषण को रोके। हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तथा साथ ही साथ देश के उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इसको रोकने के लिए आगे आना होगा। देश में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा व इसके साथ साथ हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान विभिन्न स्तरों पर दे सकते हैं, जिसमें हम समाज व राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे समाज में शिक्षा बदलाव विकास का एक बड़ा मार्ग है। शिक्षा द्वारा हम बालकों को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में बताकर जागृत कर सकते हैं तथा उसके संरक्षण के तरीके बताकर पर्यावरण प्रदूषण को रोक भी सकते हैं। शिक्षा द्वारा हम बच्चों को ही नहीं बड़ों को शिक्षित व गरीब लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं तथा इससे फैलने वाली भयंकर बीमारियों व संक्रमण के बारे में हमें बताना होगा, जिससे वे इससे सबक लेकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकें। इसके साथ साथ शिक्षा का व्यवस्था ऐसी हो जिसमें पाठ्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्रदान की जाए तथा उसको रोकने के उपाय भी बताए जाएं। समाज में समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रैलियां निकाली जाएं, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन तथा NGO द्वारा लोगों को पर्यावरण प्रदूषण व उससे होने वाले प्रभावों के बारे में बताया जाए तथा उनको रोकने के लिए उपाय भी बताए जाएं। इसके साथ साथ समय समय पर सरकार तथा समाज के जागरूक संगठनों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण प्रदूषण पर लेख व विचार लिखवाने चाहिए, जिससे लोग उनको पढ़कर जागरूक हो सकें। हमारे द्वारा समय समय पर बड़े बुजुर्गों युवाओं द्वारा छोटे बच्चों के साथ पर्यावरण प्रदूषण आदि पर चर्चा होनी चाहिए तथा उन्हें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाने चाहिए, जैसे पॉलीथीन का प्रयोग न करना, खुले में शौच आदि न करना, पॉलीथीन आदि को जलाना व पेड़ पौधों आदि को नष्ट न करना आदि। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाना तथा एक वृक्ष को कटने से अवश्य रोकना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए

हरे भरे पेड़ पौधों को लगाने और बचाने से पर्यावरण शुद्ध होता है तथा प्रदूषण को कम होता है। हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक घर में थोड़ी बहुत फुलवाड़ी होनी चाहिए, जिससे हम घर का वातावरण शुद्ध रहता है तथा पर्यावरण संरक्षण होता है। इसके साथ साथ हमें अपने घर के आसपास हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा परिवार व मोहल्ले के बड़े व सेवानिवृत्त लोगों को एक संगठन बनाकर पर्यावरण प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहने चाहिए, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सरकार द्वारा इस पर पूर्ण व प्रभावी रोक लगाए जाने चाहिए। हमारा समय समय पर अपना प्रयास होना चाहिए कि जो लोग घरों में अथवा हमारे आसपास व सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाएं, उन्हें तुरंत ऐसा करने से रोकना चाहिए तथा इससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए तथा समय समय पर उनको प्रदूषण स्तर मानकों के अनुसार चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हरे वृक्षों को काटता है अथवा नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर अथवा वन विभाग को सूचित करना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। समय समय पर हमें जिला प्रशासन तथा पर्यावरण द्वारा अनेक जागरूक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह कार्यक्रम शहर व गांव दोनों स्तरों पर निरंतर चलते रहने चाहिए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए तथा समय समय पर साफ सफाई करनी चाहिए तथा गंदगी फैलाने वाले लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागृत करना चाहिए। समय समय पर हमारे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चार्ट, चित्र, बैनर, पोस्टर आदि बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने चाहिए, जिससे लोग उनसे प्रभावित हो सकें। इसके साथ साथ हमें अपने आसपास पार्क, गली आदि में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नियमित रूप से उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कभी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर तुरंत अवसर मिलने पर शुरू कर देना चाहिए। इसमें हमें शर्म व हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस सबसे दूसरे लोगों को भी आपसे प्रेरणा लेकर पर्यावरण प्रदूषण के महत्व को समझ सकेंगे। हमें अपने घर तथा आसपास के कूड़े कचरे को सड़कों तथा नालियों आदि में नहीं फेंकना चाहिए, उसको उसके समुचित स्थान पर डालना चाहिए तथा यथासंभव कूड़ेदान व गड्ढों आदि में दबा देना चाहिए। हमें अपने निजी वाहनों को, खास करके बड़े वाहनों को, व्यस्तम भीड़ वाले स्थानों पर बहुत आवश्यकता होने पर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि इससे बहुत बड़ा जाम लग जाता है और घंटों अनेकों गाड़ियों से काला गहरा जहरीला धुआं निकलता रहता है, जो कि हमारे और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नदियों आदियों में पूजा पाठ की सामग्री, धार्मिक किताबों, मूर्ति आदि को नहीं डालना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमारा अपना प्रयास हो, यदि हम रिहायशी क्षेत्रों में कल कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित हों तो उन्हें शासन प्रशासन को अवगत कराकर शहर से दूर स्थापित कराना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला जहरीला व काला धुआं रासायनिक गंदा पानी नदियों व नालियों में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यदि हम इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखें तथा खुद व दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें तो निश्चय ही हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अहम योगदान साबित होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास कभी कभी बड़ी चेतना बन जाते हैं और यही प्रयास समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। उन लोगों के लिए जो विकराल समस्या को महत्व नहीं देते, हमारा अपना विश्वास है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और थोड़ी सी मेहनत व जागरूकता निश्चय ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक उत्तम व स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे। कहा जाता है कि जिस देश की युवा पीढ़ी जिस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेती है, निश्चय ही उस ओर से परिणाम सुखद व संतुष्टिपूर्ण आते हैं। इसलिए यदि हम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें कि वह प्रकृति से

0: प्रेम करें, उसके महत्व को स्वीकारें तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो, तो वह दूसरे लोगों को भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो निश्चय ही वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण रूपी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और निश्चय ही हम एक साफ स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना कर सकेंगे।
1: बच्चों, अभी अभी आपने वार्ता सुनी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हमारा अपना योगदान। वार्ताकार हैं दीन बंधु समाध्या। तो इन्हीं बातों के साथ बच्चों, समय हो गया है, घड़ी इशारा कर रही है टिक टिक टिक टिक करके कि वक्त हो गया है। मैं आपको बता दूं पता, ताकि आप पत्र लिख के बता सकें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो चलिए लिख लीजिए हमारा पता, बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया सुनंदा अग्रवाल ने।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। हमारा टेलीफोन नंबर है 0565-253-0135। इस नंबर पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि विषयों से संबंधित समस्या के समाधान चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन होगा कल सोमवार 10 अगस्त 2026 और समय 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ये परिचर्चा, बच्चों का उग्र होता स्वभाव। इस परिचर्चा में आज प्रतिभाग कर रहे हैं डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर रेखा चौहान, प्रीतम सिंह, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा और इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं ओपे सिंह। आइए सुने ये विशेष परिचर्चा।
2: बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, ऐसी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका चलना फिरना, घर में उनकी जो भी क्रियाकलाप होते हैं, बड़े लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन जब यही स्वभाव और चंचलता कहीं जिद में परिवर्तित होता है, उनका स्वभाव उग्र होता है, तो फिर ये सोचने को हमें मजबूर करता है कि इस बदलते स्वभाव के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आज के समाज में जो जिंदगी है वो काफ़ी दौड़ भाग भरी है। हर व्यक्ति कई आयाम पर काम कर रहा है, घर बाहर उसके सामने जटिलता है, तो ऐसे में जीवन निश्चित तौर पर दूभर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं और उनकी जिद और उनका स्वभाव जब तक वो बच्चे हैं वो मायने रखता है। तो इस बदलते हुए स्वभाव के क्या कारण हैं, क्या मायने हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का ये स्वभाव क्यों बदल रहा है। आज की हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा चौहान, जो

0: अध्यापक और विभागाध्यक्ष है मनोविज्ञान की केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज मथुरा में। डॉक्टर गौरव सिंह है मनोचिकित्सक है केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में। डॉक्टर ज्योत शाह भी हैं और श्री प्रीतम सिंह जी भी हैं जो साधक हैं, अभिभावक भी हैं और कॉरपोरेट से भी एक टेक्नोक्रेट के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और डॉक्टर रेखा चौहान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का जो स्वभाव है, अगर हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि सदियों से बच्चों के स्वभाव को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ
1: जी
0: समझाया जा चुका है,
1: जी
0: साहित्य हो चाहे विज्ञान हो
1: जी
0: उसमें। और इस बात से हमारे भगवान भी नहीं बचे हैं,
1: जी जी
0: उनको भी
1: हाँ
0: ब्रज में जब के मैया मैं तो चंद्र खिलौना
1: जी
0: लइयो, तो
1: जी
0: जिद तो बच्चों के स्वभाव में हमेशा से रही है,
1: जी
0: लेकिन वो जिद आज चिड़चिड़ापन के रूप में, उग्र स्वभाव के रूप में कहीं सामने आ रही है।
1: जी
0: तो कुछ तो ऐसे कारण हुए होंगे, कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे या हैं, जिनको हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो आप एक मनोविज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर, चूंकि बच्चों के साथ ही रहती हैं, उनसे
1: जी
0: निश्चित तौर पर व्यवहार करती हैं, तो आपका क्या मायने है कि
1: यदि हम छोटे बच्चों की बात करते
0: जी
1: हैं और जो अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं या स्कूल भी जाते हैं, तो जिद या उग्रता यदि हम उनमें देखते हैं, तो सबसे पहला कारण तो यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं।
0: जी
1: हम उसका कारण, हम उनका जिद और उनकी जो उग्रता है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन हम उसके पीछे जो कारण है उसे जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मान लीजिए स्कूल में जा रहा है, वहाँ कोई उसे टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, या जिस कक्षा में वो है वहाँ वो समझ नहीं पा रहा, जो सब्जेक्ट्स है, सिलेबस है, उसके लेवल का नहीं हो रहा है। सभी बच्चे, सभी हम बड़े लोगों में भी और बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता एक उग्रता का कारण हो सकती है। पेरेंट्स मान लीजिए ब्राइट हैं और बच्चा थोड़ा डल है, और वो उससे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो घर आ रहा है तो जिद कर रहे हैं, अरे तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए, या तुम्हारे फ्रेंड्स के जो बराबर वाला है, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग बच्चे में नहीं है, बच्चा तो मासूम है, उनमें नहीं होता है कॉम्पिटिटिव फीलिंग, लेकिन पेरेंट्स में होता है और वो उस चीज़ को बच्चे के ऊपर लाद देते हैं। तो जब तक हम बच्चे को समझेंगे नहीं कि उसकी उग्रता का रूट कॉज क्या है, तो बच्चा इसी तरह अपनी जिद करता रहेगा, या जैसा पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो अच्छा जो उसका परफॉर्मेंस है घर में भी स्कूल्स में भी, वो ऐसा नहीं दिखा पाएगा। मेन एक कारण ये है।
0: जी, यानी अभिभावक की जो बच्चों से अपेक्षा है या
1: जी
0: अपेक्षा का जो भार है, या
1: जी
0: बच्चे घर से बाहर जाकर के जो जिस वातावरण को फेस कर रहे हैं, कहीं वो घर से अलग भी हो सकता है, तो
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे
1: बिल्कुल,
0: ऐसे सामाजिक कारण हो सकते हैं।
1: क्योंकि जो उग्रता को सीखने में, या बच्चा अच्छाई भी सीखता है, बुराई भी सीखता है, बात हम यहाँ बुराई की कर रहे हैं, उग्रता की कर रहे हैं, तो इसमें एक सोशल लर्निंग, सामाजिक सीखना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चे से तो अच्छे गुणों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन पेरेंट्स पहले खुद बच्चा इमिटेशन से सीखेगा, अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। यदि स्कूल में बच्चे के जो टीचर हैं वो एग्रेसिव हैं, या उसके फ्रेंड्स जो हैं वो आक्रामक हैं, या पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: या कोई जॉइंट फैमिली है उसमें भी सभी सदस्यों में आपस में इतना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, सामंजस्य से नहीं रहते हैं, तो नेचुरली बच्चा वही सीखता है। और बच्चा यदि ये देखता है कि मेरे फादर ने जोर से बोला मदर से और मदर ने फौरन ये काम कर दिया, तो वो ये देखता है कि ये काम करवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो वो भी वही जिद और वो चीखना चिल्लाना करता है जिससे मेरी भी जिद पूरी हो सके। तो एक सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक सीखना, यानी परिवार है, पड़ोस है, स्कूल का माहौल है, यदि वहां पे इस तरह की चीजें हैं तो बच्चा उसको बहुत जल्दी सीख
0: जी
1: लेता
0: जी
1: है।
0: क्योंकि बच्चों का जो स्वभाव है, बच्चों का जो मन है या बच्चों का जो दिमाग है, वो सीखने की जो उम्र है वो इतनी उर्वर होती है कि हर
1: जी
0: चीज़ उसमें कुछ न कुछ जो है जटिलता पैदा कर जाती है। अब डॉक्टर गौरव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि बचपन और सोसाइटी और समाज तो हमेशा से रहा है, इंटरेक्शन हमेशा से रहा है, घर परिवार में लोग हमेशा से रहते रहे, व्यवहार करते रहे, लेकिन अब वो जो एग्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, चूंकि थोड़ा सा अधिक है, तो क्या इसके और भी मायने हो सकते हैं कि स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है, घर के परिवार के जो अंदर का जो वातावरण है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जटिल हुआ है? दोनों माँ बाप का नौकरी के लिए जाना, परिवार में लोगों की संख्या कम होना या लोगों की संख्या ज़्यादा होना, या आपस का वो इंटरेक्शन है, क्या इसके पीछे जो आप सोच पा रहे हैं वो क्या कारण हो
1: जी
0: सकते हैं इसके
1: बिल्कुल
0: पीछे?
1: सही कहा आपने। जो ओपीडी में बच्चे आते हैं हमें दिखाने के लिए, उसमें एक बहुत कॉमन बात ये नोट करी जाती है कि उन दोनों उनके माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं।
0: जी
1: तो वर्किंग पेरेंट्स में बच्चों में उग्रता
2: आना बहुत इजी रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे अपना टाइम

0: टाइम बिताने के लिए या तो वीडियो गेम्स या टीवी, सोशल मीडिया,
1: जी
0: इन सब का सहारा लेते हैं। और इन सब में एक बहुत कॉमन बात होती है, वो एग्रेशन,
1: जी
0: कि मोबाइल का गेम है, आपको इतने लोगों को शूट करना है और ये लेवल पार करना है, तो वो सब एग्रेशन आपको सामने सामने डिस्प्ले करना पड़ता है अपना अपना।
1: जी
0: अब वही चीज़ आदमी फिर व्यवहारिकता में भी ले आता है, बच्चा की जब उसको पता है कि जब मुझे हर तरफ से एग्रेसिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे सुनाई दे रही हैं, तो वही चीज़ वो घर में भी अप्लाई करने की कोशिश करता है कि मेरी जीत तभी मानी जाएगी जब मैं एग्रेशन दिखाऊंगा।
1: जी। तो कहीं ना कहीं जो वो सीख रहा है या खेल खेल में जिन चीजों के साथ उसका तारतम्य बैठा है उसको वो वास्तविक व्यवहार में भी ले आता है कहीं ना कहीं
0: जैसे
1: ये।
0: अभी कुछ टाइम पहले एक ब्लू वेल गेम की बहुत चर्चा हुई थी,
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: भी यही था कि बच्चों को एग्रेसिव टास्क दिए जाते थे जिसको पूरा करते करते फिर एंड में वो सुसाइडल टास्क तक पहुंच जाते थे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बच्चों की कंडीशनिंग कहते हैं इसको हम लोग। तो कंडीशनिंग में मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग होती है या तो पीयर से, मतलब फ्रेंड से या पेरेंट्स से, या फिर आपके सोशल और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट से। इसीलिए आजकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज मॉडलिंग आपकी हो रही है इन सब चीज़ों से। दूसरा ये है कि पुअर पेरेंटिंग, पुअर पेरेंटिंग मतलब घर में डिसिप्लिन करने के लिए अब लोग ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि माँ बाप होते नहीं हैं और अभी कंबाइंड फैमिली का कल्चर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो डिसिप्लिनिंग और टाइम से चीज़ें करना और इस चीज़ का मतलब समझना कि इस चीज़ से कुछ नुकसान भी हो सकता है, समझाने वाले लोग कम हैं अभी घर में।
1: कई बार थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं तो उनकी आवश्यकता भी होती है चाहे वो पढ़ना हो चाहे, क्योंकि आजकल नेट का इतना आवश्यकता हो गई है। तो प्रीतम सिंह जी, चूंकि आप तो अभिभावक तो हम सभी हैं लेकिन आज चूंकि आप उनका प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, तो कई बार हम बच्चे को सेपरेट कमरा दे देते हैं, एसी कमरा दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं और सोच लेते हैं कि हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर दी। तो जैसा डॉक्टर गौरव कह रहे हैं कि इसके भी बहुत सारे खतरे हैं अगर हम उसको ठीक से संभाल नहीं पाते, अगर उसको ठीक से देख नहीं पाते और बिना बताए बच्चे को उसकी कॉस्ट हम उसके हाथ में दे देते, तो कई
0: जी
1: बार उसके जो परिणाम है शायद बहुत गंभीर होने वाले, ये हम और आप नहीं सोच पाते।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, जितने उनको आराम के साधन उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं,
1: जी
2: मुहैया करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी जैसे दोनों मेल हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो ये आदमी ने एक जरिया ढूंढ लिया है कि बच्चे को कहीं से भी
1: इंगेज
2: एक
1: करना।
2: इंगेज करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस उसके अंदर आई है पेरेंट्स के अंदर,
1: जी
2: बिकॉज उन दोनों में से दोनों को वर्किंग करना है। ठीक, सर्टेनली मनी भी एक रिक्वायरमेंट फैमिली की होती है, तो वो सब अचीव करने के लिए उन्होंने बच्चे को एक सुविधा तो दी है, लेकिन उससे आगे क्या करना है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, शायद उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बच्चे को हमने छोड़ दिया, उसे सुविधा दे दी, क्योंकि हम जिससे कि हम आराम से काम कर सकें,
1: जी
2: लेकिन बच्चे चूंकि हम जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि बच्चे मासूम होते हैं, उनको
1: जी
2: इतनी अकल होती नहीं, खास तौर पर टीनेजर की जो हालत है आज की डेट में, वो आउटर एटमॉस्फेयर को देख के आते हैं, बाहर के संसार से जुड़े रहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, वहाँ से दुनिया भर की चीज़ें सीख के आते हैं, फिर घर में आके उनको एक ऐसा एटमोसफियर हमने दे दिया है कि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। तो होता क्या है, जितनी भी लर्निंग एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जैसे हम साधना में भी कहते हैं कि बाहरी संसार बड़ा चकाचौंध वाला है, जिसमें असलियत काफ़ी कम रहती है, बनावटीपना ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इन सारी चीज़ों से एक एग्रेशन या एक नेगेटिविटी वो ग्रैस्प कर लेता है, जो कि उसको बड़ी आसानी से ग्रास्प करने में उसको आसानी होती है,
1: जी
2: तो वो सारी चीज़ें ग्रास्प करता है, तो सर्टेनली ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना
1: जी
2: कहीं
1: जी
2: एक एग्रेसिव मोड में लेके चली आती
1: जी
2: हैं।
1: जी डॉक्टर गौरव, जैसा प्रीतम जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ तो हम देते हैं लेकिन बहुत कुछ चूंकि बच्चा घर से बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने दोस्त है, वो उसका दोस्त किस वातावरण से आता है, उसके घर का परिवेश क्या है, निश्चित तौर पे उसके साथ उसका कम्युनिकेशन होगा तो कुछ न कुछ सीख के आएगा, तो एक्सपोजर चूंकि इतना बढ़ गया है उसमें आप चाहे कार्टून की बात करें, चाहे नेट की बात करें, चाहे इंटरनेट की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, तो इतना जल्दी और इतना त्वरित रूप से बच्चे के पास चीज़ें और जानकारियाँ आ रही हैं तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है उसको और उसकी समझ उतनी है नहीं, तो शायद कहीं कहीं ये एक कारण हो सकता है कि हम कितनी भी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हों लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास एक्सपोजर है चीज़ें बहुत जल्दी से उसके पास आ रही हैं, सोर्स कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से आ रही हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर के नाते आप क्या मानते हैं कि पेरेंटिंग की जो जिम्मेदारी है?

0: वो कितनी और बढ़ जा रही है कि हम सिर्फ घर को ही नहीं देख सकते, घर से बाहर जो चीज़ें उसके पास चल के आ रही हैं और कौन क्या उसके पास ला के दे गया हमें पता भी नहीं है, और जब उसको वो अप्लाइड कर लेगा, देख लेगा, या उसके स्वभाव में वो चीज़ परिलक्षित आएगी, तब तब हम सोच पाएंगे ये कैसे हो गया, अचानक वो ऐसे क्यों रिएक्ट किया, हमने तो ऐसा नहीं कहा, ऐसे तो हमने नहीं सोचा। तो ये जो बाहर से आने वाले जो खतरे हैं जिनको हम देख भी नहीं पा रहे और पहचान भी नहीं पा रहे, उनके लिए क्या मतलब, आपके पास तो पेरेंट्स आते हैं तो क्या फिर सजेस्ट करते हैं आप जो है?
1: देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता
0: जी
1: है ना। आपको आप दिन भर में जो भी चीज़ें हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बारे में बात करनी पड़ती है कि क्या हुआ, क्या सीखा, क्या देखा, है ना। क्योंकि मॉडलिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात उसमें यह रहती है कि बच्चा जो बिहेवियर सीख चुका है वो थोड़ा बहुत ये भी जानता है कि माँ बाप इसको अप्रूव नहीं करेंगे, तो वो बताने से बहुत बार कतराता है।
0: जी।
1: तो माँ बाप और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ छुपाए नहीं और उसको बिल्कुल भी झिझक ना हो कि अगर मैंने ये बात बताई तो इसका कुछ मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि घर में एक पेरेंट सख्त होता है और एक पेरेंट थोड़ा उस बच्चे के बिहेवियर को जानता है, समझता है, तो उसके हिसाब से
0: जी
1: चलता है। पर आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों ही माँ बाप सख्त होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश कम करते हैं।
0: तो मतलब कहीं ना कहीं जो जानकारी का जो आदान प्रदान है कि बच्चे
1: जी
0: ने अगर कुछ मान लो वो जानकारी कुछ भी हो सकती है, अगर उसके पास आई और स्वाभाविक तौर पे उसने उसको पकड़ा या उसको महसूस किया, तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि माँ बाप का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो उनके साथ आके कम्युनिकेट करें, उनको
1: कम्युनिकेट करें।
0: बताए कि
1: जी
0: आज मेरे पास ये चीज़ चल के आई, तो ये आप कहना चाह रहे हैं
1: बिल्कुल
0: जी। डॉक्टर जोसना, आप भी चूँकि उससे हैं और आज आप उसके टेबल के इधर बैठी हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आप जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी रही होंगी, तो ये कितना बड़ा मतलब मुश्किल है कि एक जानकारी हम तक आई, हमने उसको स्वाभाविक तौर पे लिया, अब हमको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, भाई बताना है, लेकिन कई बार लगता है नहीं नहीं बताएं, तो वो नहीं बताएं तो कितनी देर हो चुकी होती है, बता देते तो पेरेंट्स को फिर ये खोजबीन करते, अच्छा तेरे पास कहाँ से आई, तो कहीं ना कहीं एक झिझक तो रहती है उसमें, एक उसको स्वाभाविक अगर हमें बनाना हो तो बच्चे के उस पर आप क्या कहना चाहेंगी उसमें?
2: सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो कभी भी अपनी बातें शेयर करने से ना कतराएं,
0: जी जी जी
2: ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो अपने दोस्त के साथ करते हैं, तो वो अपनी बातों का आदान प्रदान पूरी तरह कर पाएंगे, तो बच्चा कभी भी अपनी बात कहने में झिझक नहीं पाएगा। वही चीज़ बच्चे स्कूल से भी सीखते हैं, वो अगर वही बातें अपने अध्यापक और अध्यापिका को बताएंगे तो वो चीज़ पेरेंट्स को कन्वे की जाएगी। सो यहाँ पे टीचर का तालमेल पेरेंट्स के तालमेल से कहीं इक्वल, दोनों के बीच में इक्वल तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो
0: जी
2: एक तो ये फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर है सोशल मीडिया, जो बच्चों को जैसे सर ने बोला कि चकाचौंध है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को, अपने बच्चे को जितना सोशल मीडिया से बचा के रखेंगे उतना वो बाहर की चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका मन है जो दूसरी एक्टिविटीज़ में वो लगा सकता है, खेल कूद में लगा सकता है। आजकल कितने बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, इंडोर उनके पास इतना ज़्यादा संसाधन हमने उपलब्ध करा दिए हैं
0: जी जी जी
2: जिनको वो, जैसा आपने बोला
0: लेकिन
2: कि
0: वो बाहर भी जरूरी है, मतलब
2: हाँ
0: आउटडोर एक्टिविटी भी जरूरी है।
2: बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा आउटडोर बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जो मन है वो, जो चंचल है वो दूसरी तरफ भी डायरेक्ट हो सके। आजकल कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे खो खो खेलते हैं, कितने बच्चे कबड्डी खेलते हैं,
0: जी जी
2: तो
0: जी
2: हमें उनका मन है दूसरी तरफ डाइवर्ट
0: मतलब
2: करना बहुत
0: एनर्जी
2: जरूरी है।
0: मैनेजमेंट के भी
2: तरीके
0: तरीके जो शुरू से
2: हाँ
0: रहे उनको आज भी उनकी जरूरत
2: जरूरत बहुत
0: बनी।
2: ज़्यादा है जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनको शुरू से ही मोबाइल दे देते हैं, शुरू से ही गेम्स लैपटॉप के उनको उपलब्ध करा देते हैं, तो वो एक कहीं ना सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है,
0: जी जी
2: जिससे हमें बच्चों
0: जी
2: को बचाना चाहिए।
0: लेकिन सोशल मीडिया की चमक इतनी है कि हर आदमी उससे बच भी नहीं पा रहा, और कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम उससे बच के रहेंगे, हट के रहेंगे तो कहीं जिंदगी की दौड़ में पिछड़ न जाए। कहाँ पे बनता है कि भाई कितना कोई चीज़ है हम उसको हटा तो नहीं सकते,
2: नहीं
0: सोसाइटी में हर रोज नई चीज़ें आ रही हैं उसको हम हटा तो नहीं सकते,
2: जी
0: लेकिन कितना मतलब कहाँ तक?
3: हाँ, जैसे मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ कि जो आजकल जो न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या बच्चों के लिए इंटरनेट वगैरह है, हम लोग उनके हाथ में टैबलेट वगैरह देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर हमें ध्यान देना भी ज़रूरी है कि बच्चा उसका यूज़ कैसे कर रहा है।
0: जी जी जी
3: लैक ऑफ
0: जी
3: टाइम तो है ही पेरेंट्स के पास।

0: इसीलिए वो दोनों यदि वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी वर्किंग के आप किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। तो यदि हमने बच्चों के लिए किया और उनको ये देखा नहीं कि उसका यूज़ क्या हो रहा है, हमारी भी एनर्जी वेस्ट हुई। हमने यदि काम किया, पैसा कमाया और बच्चों को साधन दिए, लेकिन उन साधनों का मिसयूज़ हुआ, तो वो बच्चों के लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। और टाइम ऐसा है कि बच्चों को आप इससे दूर नहीं रख सकते। इंटरनेट तो आज छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं जो, तो मैं देखती हूँ कि उससे वो बहुत सारी चीज़ें अपना जो उन्हें
1: सीखते
0: प्रोजेक्ट
1: हैं,
0: बनाना
1: आवश्यक
0: है,
1: हो जाती
0: उन्हें
1: है।
0: पेंटिंग्स निकालने हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उनसे लेते हैं। तो ध्यान इस चीज़ का देने का है कि हम बच्चों पर कितना ध्यान दे पा रहे हैं। देर रात तक बच्चा यदि जग रहा है, तो ऐसा ना करिए कि आप बिल्कुल उसका सेपरेट रूम कर दिए, जब सोने जा रहा है तब बात अलग है। देखिए, पढ़ते समय सो गए हैं बच्चे, तो भी आप एक बार जाके उनके रूम में देखिए। ये तो पेरेंटिंग है, इसमें
1: जी जी
0: आपको
1: जी
0: मेहनत तो करनी ही
1: मतलब
0: पड़ेगी।
1: पेरेंटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता प्रीतम
0: जी
1: जी। जब कभी जैसे आप बाहर से आते हैं और पूरा मतलब कॉरपोरेट को झेल के आ रहे हैं, वहाँ बहुत बड़े टास्क हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट हैं, कई बार अच्छा भी लगता है, लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं और इतने थक चुके होते हैं, वो बच्चा आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, आप इतने थक चुके होते हैं कि आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, तो या कई बार बच्चा इंतज़ार करते करते सो चुका होता है जब आप आते हैं, और अगले दिन जब वो जगता है तब तक शायद आप जा चुके होते हो, तो एक इतना जो कहते हैं डॉक्टर गौरव ने कहा ऐसा ना हो कि अपनी महत्वाकांक्षा, या आप ही कह रहे थे कि हमारी अपनी महत्वाकांक्षा को पाते पाते हम बच्चों को खुद ही पीछे छोड़ जाएं, और फिर बाद में जब मुड़ के देखें और कम्युनिकेशन का समय आए तो गैप इतना बड़ा हो चुका हो। तो ये जो सब लोग बात कर रहे हैं कि साधन भी हैं, सुविधाएं भी हैं, लेकिन अगर वक्त आप नहीं दे पा रहे, समय साथ नहीं गुजार पाते, तो फिर ऐसे साधन और सुविधाओं का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, वो शायद हड़बड़ी ही पैदा करेंगे।
0: जी
1: तो एक पेरेंटिंग के नाते वो जो समय है, जो क्वालिटी टाइम है, जो हमको बिताना चाहिए या उसको मैनेज करना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे सो?
0: बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है इनफैक्ट अगर देखा
1: जी
0: जाए, बिकॉज़ खास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ जहाँ की टाइमिंग रियली हमारी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है।
1: जी
0: फिर भी अगर मैं पर्सनली अपने ऊपर लूँ तो हम तो कोशिश करते हैं कि इवनिंग में चाहे हम कितने भी किसी भी टाइम आएँ तो बच्चे के साथ जरूर बैठ के उससे बातचीत करते हैं, दिन भर क्या हुआ, कोशिश करते हैं कि
1: जी
0: बच्चा अपने दिन भर की सारी बातें हमारे साथ शेयर करे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, हम बच्चे को बच्चे की जगह पर अपने आप को रख के कभी नहीं देखते हैं, हम अपने दिनों को शायद कभी कभी बच्चे को डील करते समय भूल जाते हैं, हम बच्चे में इतनी आइडियोलॉजी चाहते हैं जो कि बच्चे के अंदर नहीं आती हैं, कभी कभी एग्रेशन, आउट ऑफ एग्रेशन हम बच्चे के ऊपर बहुत बुरी तरह डांट डपट भी करते हैं, लेकिन
1: जी
0: बाद में हम कभी फील करते हैं उस चीज़ को कि ये बच्चा है, जब वो बात हमारे जहन में आती है कुछ सोचने के बाद, तो हमें फील होता है कि बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उससे उतनी ही एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए जितने के लायक वो है, जितनी उसकी उम्र है, क्योंकि एक मेंटल लेवल भी होता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता है, चूंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उनके साथ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो हम एग्रेसिवली उनके साथ पेश आते हैं और वो बच्चा हमसे अडॉप्ट कर लेता है,
1: जी
0: जैसे अनुकरण से सीखना जैसे मैडम ने कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ, बच्चा हमें देखता है, हम उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो बच्चे के अंदर चली जाती हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम समय की कमी की वजह से बच्चे के अंदर इरिटेशन पैदा कर देते हैं, बच्चा कोई बात बताना चाहता है लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है, बच्चे ने कुछ बात बतानी चाही, पता चला हमारा फ़ोन आ गया, हम फ़ोन पे बिजी हो गए, फिर बात करते करते वहाँ से निकल गए, वापस आके देखते हैं बच्चा वास्तव में इतना इरिटेटेड होता है तो
1: कि हमने उसकी
0: उसको
1: बात को नहीं
0: उसकी
1: सुना।
0: बात को नहीं सुना, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बीज बोती हैं इरिटेशन का, एग्रेशन का बच्चे के अंदर, अगले दिन से वो आपके साथ बैठना बंद कर देगा, दूसरे दिन से आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम दिया जाए, कोशिश की जाए मैक्सिमम टाइम बच्चे को
1: जी
0: घर में आके
1: जी
0: दिया जाए।
1: डॉक्टर गौरव, जैसे प्रीतम भाई बता रहे हैं उसमें कि कई बार जैसे एक स्वाभाविक परिस्थिति होती है, हम सबके बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उसमें कई बार जाते हैं पीटीएम में जाते हैं, कई बार टीचर्स हमको कुछ चीज़ बताती है, हमें नहीं पता होती, लेकिन टीचर ने हमारे सामने रखा, हमें पता इसलिए नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं था, हमने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, बच्चे ने तो हमको बताना चाहा, लेकिन वो चीज़ जब बच्चे ने बतानी चाहिए तब तब हमने नहीं सुनी, और जब टीचर ने उस चीज को हमारे सामने रखा तो हम शायद चौंके कि अरे ये तो

मुझे पता ही नहीं था। तो वो कई बार बात बहुत छोटी सी होती है, या कोई किसी सब्जेक्ट में हम चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, नंबर थोड़ा सा गिर गए उस पर, तो छोटी छोटी बातों पे जो अनायास हमारे सामने आती हैं, और हम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही जो सोच रहे होते हैं जैसा इन्होंने कहा, तो वो जो परिस्थिति आती है वहाँ पर कैसे हैंडल करना चाहिए उसको, भाई ये हमारे हमें पता लगा कि यार अरे हम तो ऐसा नहीं सोचते थे, चाहे नंबर कम हो जाना हो या कोई व्यवहारगत कोई ऐसी चीज़ है जो हम बच्चे से नहीं सोचते कि अच्छा ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अचानक आई, अब उसमें क्या ये बनता है एक पेरेंट्स के नाते कि क्या तुरंत हम रिएक्ट करें, या फिर या बच्चे के साथ बैठे उसकी बात सुने अपनी बात रखें, या उस हुई बात के जो परिणाम हो सकते हैं उसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं उसके साथ बांटें, तो

0: परिणाम हो सकते हैं, उसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं, उसके साथ बांटे, तो वो क्या, आप क्या सोचते हैं कैसे हमें डील करना चाहिए इस बात को?
1: देखिए, अगर बच्चे में एग्रेशन है और आपको ये पता चलता है, तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब कि बच्चे को पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट, इन तीनों में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जो बिहेवियर आप पसंद करते हैं, जो आप चाहते हैं कि बार बार हो, उसमें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, मतलब उसको किसी ना किसी तरह से आप पुरस्कृत करें। जिसमें स्टार सिस्टम भी होता है, टोकन सिस्टम भी होता है, कि बच्चे को आपके साइकिल चाहिए तो आपको ये करना है कि 1 महीने के अंदर इतने स्टार्स तुम कलेक्ट करोगे या इतने टोकन कलेक्ट करोगे, जो कि आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, तो ही साइकिल मिलेगी, है
0: जी
1: ना। इसी तरह से पनिशमेंट, पनिशमेंट में लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो है फिज़िकल पनिशमेंट। पर फिज़िकल पनिशमेंट से एग्रेशन और बढ़ता है, क्योंकि फिज़िकल पनिशमेंट अपने आप में एग्रेशन जस्टिफाई करती है। तो पनिशमेंट देने के और भी तरीके होते हैं, जिस तरह से टाइम आउट होता है कि बच्चे को जो भी परेशान कर रहा है उसको एक दीवार के सहारे खड़ा कर दें या एक कुर्सी पर बिठा दें और उसको आधे घंटे तक वहीं रखें। ग्राउंडिंग होती है कि पॉकेट मनी मिलती है तो वो कम हो जाएगी, खेलने का टाइम आपका कम हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे बिहेवियरल थेरेपीज के अंदर मेजर्स होते हैं, जो आप बच्चों को अगर आप डिसिप्लिन के थ्रू सिखाएं तो बच्चों का व्यवहार बदला जा सकता है, खासकर एग्रेशन।
0: जी, कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं बच्चों में जैसे कि एक हम तो नहीं सोच पा रहे, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर हैं और उस फील्ड से हैं, कि भाई कुछ लक्षण ऐसे बच्चे में आ रहे हैं।
1: जो हमारे पास केस आते हैं उसमें से करीब करीब आधे अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के नाम के कैटेगरी उसके आते हैं। तो उसमें तीन प्रमुख लक्षण होते हैं, एक तो होता है एग्रेशन, दूसरा होता है आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर कि
0: जी
1: हर चीज़ में उसको बहस करनी है बार बार, और तीसरा होता है तोड़फोड़ करना कि आपकी अगर बच्चे ने बात नहीं मानी है तो बच्चा पैर पटकेगा, ज़मीन पर लेटेगा, कुछ चीज़ें तोड़ देगा। तो सबसे ज़्यादा ये तीन कैटेगरीज के अंदर ही हमको बच्चों के बिहेवियर देखने को मिलते हैं।
0: क्या छोटे बच्चों में डिप्रेशन भी आ रहा है?
1: जी,
0: क्या एक कारण है?
1: चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ एन एंटिटी और वो आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। तो एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन का होता है स्ट्रेस।
0: तो डॉक्टर जोशना, क्या आपको लगता है कि एक यंग पेरेंट्स हो या सोसाइटी में हम बिहेव कर रहे हैं उसमें, तो क्या हमें बच्चे के उस लेवल को देखना चाहिए, उसके आईक्यू को देखना चाहिए एज ए पेरेंट्स, के बजाय हम अपनी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं उस पर थोपें, बच्चे को भी अगर हम देख लें कि इसमें स्वाभाविक तौर पर ये गुण बनता है, इससे ये कराया जा सकता है? क्योंकि पहले माँ बाप, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़े होने तक, इवन शादी होने तक भी उसको ये नहीं अधिकार देते थे कि तुम अपनी पेरेंट पसंद का वो कर लीजिए, वो उसको बच्चा ही मान के चलते थे। आज हम बच्चे को बहुत बड़ा पहले ही बना दे रहे हैं, तो क्या ये जो समय से पहले दी गई जिम्मेदारी भी बच्चों को कहीं अग्रसर की तरफ ले जा
2: हाँ
0: रही है?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हम बच्चों से इतनी ज्यादा अपेक्षाएं करने लगे हैं कि वो अननेसेसरी उनके ऊपर बर्डन जैसा महसूस हो रहा है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहां से किसी और ही डायरेक्शन में जाके वो अपने मन के मुताबिक नहीं चल पाते हैं। तो हमें सबसे बड़ी चीज है लेवल ऑफ इग्नोरेंस। तो पेरेंट्स को, जो भी बच्चा है, उसकी इमोशंस को समझना चाहिए, उसके व्यवहार को समझना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, खेल के प्रति जाना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, तो हमें उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी को समझ के उसके हिसाब से व्यवहार करना जरूरी है।
0: जी, रेखा जी क्या कहेंगी, मतलब पेरेंट्स के ऊपर जो जिम्मेदारी आ रही है, कई बार तो पेरेंट्स उस स्थिति में भी नहीं होते,
1: जी
0: उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हर पेरेंट्स, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन बच्चे को अपने से आगे ही देखना चाहता है। तो ये पेरेंटिंग पे आ रही जो जिम्मेदारी है, इसको हमको समाज में एक जागरूकता के तौर पे, एक अभियान के तौर पे ले जाना चाहिए कि पेरेंटिंग के तरीके भी भाई सीखो।
2: पेरेंटिंग जो है एक बहुत टफ जॉब है, एक आसान काम नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि फ्रेंडशिप, बिल्कुल हमें अपने जो बच्चे हैं उनसे मित्रवत हो जाना चाहिए कि बच्चे विश्वास पैदा हो जाए, तभी बच्चे बाहर की बात आपको बताएंगे और आप उन्हें सही सलाह दे पाएंगे। इसी तरह बच्चे से आप भी कुछ ना छुपाएं, दूसरा उन्हें ज़्यादा एज से ज़्यादा बड़ा ना समझें, जैसे अभी है कि उनके ऊपर हम ज़्यादा आकांक्षाएं, लेकिन हाँ टाइम चेंज आ रहा है, बच्चे को हम भी चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे।
0: प्रीतम जी, क्या हमको ये लगता है कि हर काम अगर हम घर परिवार में बैठ के साथ में करें तो काफी कुछ चीजों का समाधान निकल सकता है
3: निश्चित रूप
0: उसमें?
3: से बहुत मुख्य बात हम इतनी पूरी वार्ता के दौरान शायद मिस कर गए, हर एक में से ये कहना जरूर चाह रहा है, लेकिन एक मॉरल एजुकेशन जो आज की डेट में

0: ना कहीं मिस हो रही
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सारे डिसऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं। और मॉरल एजुकेशन बेसिकली बच्चा पेरेंट्स से ही सीखता है,
1: जी
0: बेसिक
1: जी
0: जो
1: जी
0: आप कैसा बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ, आपका फैमिली में एक स्पिरिचुअल जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मॉरेलिटी से जुड़ा हुआ है, अगर बच्चे को मॉरल वे में आप डील करेंगे और उसको एक रियल मीनिंग लाइफ का समझाएंगे, क्योंकि हमने बच्चे को इतना एम्बिशियस बनाने के लिए उसको दौड़ में शामिल कर दिया है जिसको किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि एक लाइफ का रियल मीनिंग वो नहीं है।
1: जी, या आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर उसके पेरेंट्स जिनके साथ बच्चा रह रहा है वो खुद एक बहुत अच्छा और स्वाभाविक जीवन जी रहे होते हैं तो शायद जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की वो स्वतः ही हो जाती है।
0: स्वतः हो जाती है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: निश्चित रूप से वो स्वतः हो जाती है, और पेरेंट्स को वो करके दिखाना पड़ेगा।
1: पेरेंट्स जैसा जीवन जी रहे, पेरेंट्स जैसा बच्चों को जी के दिखा रहे, शायद वो ही बच्चों तक जा रहा है और उसको चूंकि हम सब जी रहे हैं तो हम सबसे वहीं वो पहुंच रहा है। तो अगर हम शायद अपने स्वभाव को देखेंगे, अपनी तरफ लौट के आएंगे तो शायद बच्चे भी स्वतः ये सब सीख जाएंगे। आप सब लोग आए और ये जानकारी दी, ये सहयोग के लिए और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे ये विशेष परिचर्चा जिसका विषय था बच्चों का उग्र होता स्वभाव। इस परिचर्चा में भाग लिया डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर रेखा चौहान, प्रीतम सिंह और डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा ने। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आक्रमण से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आरडी बर्मन और आशा भोसले के स्वर में आपने सुना जोशीले फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था आरडी बर्मन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

झुक गया आसमान, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी कल 10 अगस्त 2026 को दोपहर 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94122255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछ सकते हैं सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 10 अगस्त 2026 और समय दोपहर 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म इश्क विश्क से। आवाजें हैं अलेशा चिनो।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत लीजिए सुनिए, एआर रहमान, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हम से है मुकाबला से। गीत को लिखा है पीके मिश्रा ने, संगीत एआर रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: हेलो आकाश वाणी हेलो आकाश वाणी हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। मैं श्रोता मेरे गाँव कुआ से भजन लाल बोल रहा था सर।
1: कैसे हैं भजन लाल जी?
2: ठीक है सर, हम तो बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं सर?
1: एकदम अच्छे हैं, मौसम भी अच्छा है।
2: चलो बहुत बढ़िया, हम तो यही प्रार्थना करते हैं पहुंचे आप अच्छे और मस्त रहे। अच्छे अच्छे गाने आपके द्वारा मिलते रहते हैं अच्छे सुनने के लिए।
1: गाँव में सब ठीक है आपके?
2: गाँव में सब बढ़िया है सर, मौसम भी बहुत बढ़िया है। कल तो बहुत बारिश हुई था, 2-2.5 घंटा पानी पड़ा।
1: जी जी, मानसून का सीजन है, अब तो बारिश तो होनी है।
2: हाँ कल तो बहुत पानी पड़ा सर
1: जी। आज बताएं भजन लाल जी।
2: अरे हम आज कन्यादान का एक गाना सुनवा दी सर, पराई पराई मेरी दोस्तों जुना कर, ना मिल सकूंगी तुझको मेरी यार जुना कर।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद भजन लाल जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल उठाने के लिए सर।
1: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते सर।
1: नमस्ते, स्वागत आपका।
0: सर मैं ब्रिज रेडियो सोता मित्र गांव उस पार से वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर।
1: कैसे हैं वीरेंद्र जी?
0: सर बढ़िया है, और हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है सर।
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
0: सर जी सावन का महीना चल रहा है।
1: जी हाँ, मानसून का सीजन है, बारिश का मौसम है और मौसम
0: जी।
1: भी सुहावना है।
0: हाँ जी सर, हमको एक गाना सुनवा दीजिए।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाए।
0: सर जी फिल्म का नाम है ब्रज भूमि। झूला तो पर गयो अमुआ की डार पे जी, ये गाना सर। सर जी हमारे केशव भैया से थोड़ा बात कर लीजिए।
1: जी
2: सर नमस्कार।
1: नमस्कार केशव जी, स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: ठीक है सर, मानसून आ गया, मौसम ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी जी,
2: और आप ठीक हो?
1: एकदम अच्छे हैं सभी लोग, काम अच्छा चल रहा है।
2: बहुत अच्छा है, हमारी फरमाइश है आपके लिए।
1: जी सुनवाते हैं आप दोनों मित्रों की फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ भैया नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, कैसे हैं?
1: बढ़िया है योगेश जांगड़े पे, मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी, योगेश जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है?
1: बिल्कुल सब झमाझम है।
0: मानसून आ गया है, झमाझम बारिश हो रही है,
1: नहीं हो रहा है बारिश, बस झमाझम नहीं है
0: कम हो रहा है।
1: जी, बहुत कम है भैया।
0: अच्छा, और परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब कुशल मंगल है।
0: बताइए, आज योगेश जी क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म चांदनी से सुनवा देंगे, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो आकाशवाणी,
1: आदरणीय देखी जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंदौली से बोल रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं?

0: लवन्या साहब
1: सर बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, मस्त हैं। बताएं हमारी हेलो आकाशवाणी टीम और हमारी दीक्षित जी कैसे हैं?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: बिल्कुल सर, और मौसम भी बड़ा सुहाना है और हल्की हल्की मंद मंद हवाएं हैं, हल्के हल्के बादल हैं और कभी कभी सावन की जो फुहारे हैं
0: जी
1: वो भी आकर के मौसम को और ज्यादा खुशनुमा बना रही हैं। तो बहुत अच्छा मौसम है सर इस समय।
0: जी जी ऐसे खुशनुमा मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सबसे पहले तो सर आकाशवाणी मथुरा परिवार को और सभी श्रोताओं को और खासकर उन फौजी भाइयों को जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनको हमें याद करते हैं और उन वीर सपूत जो शहीद हुए हैं हमारे इस देश की माटी के ऊपर, उनको सलाम करते हुए याद करते हुए
0: जी
1: आज हम आपसे गुजारिश करेंगे। भीगे भीगे मौसम में गाना सुनना है, चांदनी फिल्म है
0: जी
1: और गाने के बोल हैं लगी आज सावन की सिरगोज हुई है।
0: सुनवाते हैं लवानिया साहब आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर जी, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: विदिशा से शिवा लोहट आपसे बात कर रहा हूँ सर।
0: स्वागत है शिवाजी, बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: एकदम अच्छे हैं। आप क्या काम करते हैं?
1: समाज सेवा काम करते रहते हैं। एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ सर।
0: जी जी जी।
1: तो जैसे कि गाय को चारा रखना हो गया, पक्षियों को दाना पानी रखना हो गया, पेड़ पौधे लगाना हो गया सर जी, और गरीब लोगों को समय समय पर 3 महीने में हर बार रक्तदान करना हो गया।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सामाजिक कार्य वाकई पुण्य का कार्य है।

0: जी
1: आप कब से सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम?
0: सर जी, मैं लगभग मुझे 1 साल हो चुके हैं
1: जी,
0: और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं सर जी।
1: और फोन पहली बार मिलाया है?
0: नहीं सर, कभी कभी 10-10, 15-15 घंटी चली जाती हैं और कॉल नहीं उठता है सर जी। ये थोड़े से दिक्कत का समस्या है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि पहली घंटी में आपसे बातचीत वार्तालाप हो रही।
1: बहुत सुंदर, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा
0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: जी।
0: मूवी का नाम रहेगा सर जी कल की आवाज,
1: जी
0: और गाने के बोल रहेंगे सर जी कर ना सके हम प्यार का सौदा।
1: सुनवाते हैं शिवाजी आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अरे वाह अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया हैं सर।
0: और बारिश कैसी हो रही है?
1: सर आपके यहाँ सावन लग गया क्या?
0: सावन तो लग चुका है।
1: सर हमारे यहाँ तो जेठ चल रहा है
0: जैसे
1: सर। धूप निकली हुई है, गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, सावन का कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे बोल दूं कि सावन लग गया है?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बारिश के मौसम में बारिश होना बहुत अनिवार्य है।
1: क्या करें सर, आसमान की ओर तकते रहते हैं कि कब बारिश हो, कब मौसम में परिवर्तन आए, लेकिन पता नहीं क्या बात, ईश्वर को क्या मंजूर है।
0: चलिए ईश्वर की कृपा जल्दी ही हो आपके ऊपर और बारिश हो झमाझम, आनंद लें आप मौसम का।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए फरमाइश क्या है आज?
1: सच्चा झूठा को सुनवा दिए सर। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है?
0: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब।
1: शुक्रिया सर जी।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे बात करेंगे प्रकृति में सावन के विषय पर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना अपने आप में एक अनूठा और बहुत ही सुहावना महीना होता है। प्रकृति में सावन का महीना जीवन, उल्लास और सृजन का प्रतीक है। श्रोताओं, मानसून की रिमझिम फुवारों से सूखी धरती तृप्त होती है। चारों तरफ फैली हरियाली, खिलते हुए फूल और पेड़ों पर झूलते पंछी प्रकृति के सौंदर्य को अलौकिक बना देते हैं। यह महीना पर्यावरण संतुलन और पुनर्जीवन का महीना भी है। श्रोताओं,

श्रोताओं, सावन का महीना बहन बेटियों के लिए मायके जाने, झूला झूलने और सिंजारा मनाने का विशेष समय होता है। इस दौरान उन्हें मानसिक सुकून मिलता है, माता पिता और भाइयों का स्नेह प्राप्त होता है तथा इसे घर में सुख समृद्धि व माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। शादी के बाद बेटियों का सावन में मायके आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ उन्हें बिना किसी रोक टोक के बचपन जैसा खुलापन और प्यार मिलता है। परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल से आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं।

श्रोताओं, ये समय पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पौधारोपण इस बारिश के समय में करना चाहिए। इस दौरान हवा में नमी होती है, बारिश का पानी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और जिसके उनका विकास जो है तेज़ी से हो जाता है। मिट्टी में नमी रहने से पौधों को सूखने का जो खतरा होता है वो कम होता है और बारिश के पानी में प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों की जो है ग्रोथ बढ़ाते हैं और उनके अच्छे विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस मौसम में, इसीलिए ये समय वृक्षारोपण करने के लिए बहुत ही उपयोगी समय माना जाता है। नीम, पीपल, बरगद, शीशम, आम, अमरूद, जामुन और नींबू, इन सब के वृक्ष इस समय अवश्य लगाने चाहिए।

श्रोताओ, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मास है, जिसका समापन श्रावण पूर्णिमा पर भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ होता है। हरियाली तीज और नागपंचमी जैसे उत्सव भी इस महीने पूरे उल्लास से मनाए जाते हैं। सोमवार के दिन श्रोताओ, भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं और उनसे मनवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। यह पर्व सावन मास की आखिरी पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सावन के आते ही बेटियों को मायके से कपड़े, श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। गांव और शहरों में हरियाली तीज व सावन के गीतों के साथ मिलकर झूला झूलने की भी पुरानी परंपरा है।

श्रोताओं, सावन का महीना उल्लास, मस्ती, घूमने और उत्सव मनाने का सबसे सुंदर समय होता है। इस दौरान चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, झूला झूलते हैं और पारंपरिक त्यौहार मनाते हैं। बारिश से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा होता है। हरियाली, तीज, रक्षाबंधन और नागपंचमी इसी महीने मनाए जाने वाले त्यौहारों में से एक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था प्रकृति में सावन। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओ कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओ वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 10 अगस्त

सन 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 10 अगस्त सन 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्मी कब्बालियां।

अभी आपने सुनी सोनू निगम और भरत जोशी की गाई हुई ये कव्वाली। फिल्म का नाम था चांदी सोना। कार्यक्रम की अगली कव्वाली आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और अभिजीत की आवाजों में। फिल्म का नाम है चांद से कोई चेहरा।

अभी आपने सुनी फिल्म शोले की ये कव्वाली, जिसे गाया था भूपेंद्र सिंह और अभिजीत ने। कार्यक्रम की अगली कव्वाली आइए सुनते हैं, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या?
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
7: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं मल्हार गायन। आज के कलाकार हैं रमन लाल।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुनी फिल्म हिना की ये कव्वाली, और इसी के साथ ही हमारे आज के फिल्मी कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत मल्हार गायन। आज के कलाकार थे रमन लाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है।

0: फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर आप लिख सुनेंगे हिना कौशिक की लिखी हुई झलकी गुलदस्ता, प्रस्तुति राजेश सिंह की होगी।

दिन में 1:30 पर कार्यक्रम होगा श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे अजय नारायण गुप्ता की लिखी हुई झलकी रमते राम, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की होगी।

संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा होगी स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और बागवानी फसलों की खेती से आय बढ़ाने के उपाय विषयों पर। साथ ही श्रोता मन भावन के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों का भी आनंद ले सकेंगे। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: आइए सुनते हैं इस मास का गीत। बोल है पिया सावन की लागे झड़ी। स्वर डॉक्टर अंशुना सक्सेना के हैं, संगीत नरेश मल्होत्रा का है।

0: अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत। स्वर डॉक्टर अंशुना सक्सेना के थे। संगीत दिया था नरेश मल्होत्रा ने। गीत लिखा था मुरली मनोहर मंजुल ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट where dreams टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां है कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला देहरादून जम्मू अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट where dreams take off।
0: आइए सुनते हैं हिना कौशिक की लिखी हुई झलकी गुलदस्ता। प्रस्तुति राजेश सिंह की है।

0: लहंगे स्वराज चरखा चला चला के, लहंगे स्वराज
1: बाबूजी
0: स्वराज चरखा चला।
1: दूध यहाँ रख रही हूँ।
0: हाँ हाँ रख दो बहू, रख दो बहू। लहंगे स्वराज
1: जल्दी से पी लीजिए,
0: चरखा चला
1: नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
0: लहंगे स्वराज लहंगे
1: स्वराज आए 40-50 साल होने को आए, लेकिन बाबा का वही पुराना राग, लहंगे स्वराज लहंगे स्वराज।
2: मम्मी किससे बातें कर रही हो?
1: ओ अरे किसी से नहीं, अपने आप से ही बातें कर रही हूँ।
2: मम्मी ये चरखा चलाने से आजादी कैसे मिल गई?
1: मुझे नहीं मालूम, अपने दादाजी से ही पूछ कि कैसे घर बैठे चरखा चलाने से आजादी मिली।
2: दादाजी दादाजी दादाजी बताइए ना, चरखा चलाने से आजादी कैसे मिल गई?
0: अरे बेटा वह वक्त ही कुछ और था, देश में हर तरफ राष्ट्रीयता की लहर दौड़ रही थी, आजादी की लौ जल उठी, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी वस्त्र पहनने का बिगुल बजाया, महात्मा गांधी बाबा साहब ने स्वदेशी प्रसार का आदेश दिया, स्वदेशी का इस्तेमाल करो, विदेशी चीजें फेंक दो। फिर क्या था, जगह जगह विदेशी चीजों की होलियां जल उठी।
2: तो दादाजी ऐसे मिली आजादी?
0: बेटा हमारी लड़ाई थी विदेशी सरकार के खिलाफ अपनी आजादी के लिए, लेकिन अब तो हम आजाद हैं, देश में जनता की सरकार है, हमारा अपना शासन है।
1: बाबूजी इसे आजादी की ही कहानी सुनाते रहेंगे या इसके भविष्य के बारे में भी कुछ सोचेंगे आप?
0: क्या मतलब?
1: बाबूजी आपने सेनानियों को मिलने वाली पेंशन लेने से इनकार कर दिया ना, ताम्र पत्र लेना भी स्वीकार नहीं किया।
0: हाँ तो क्या हुआ, क्या इसी सब के लिए लड़ी थी हमने आजादी की लड़ाई?
1: ना सही, पर बाबूजी स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को स्कूल कॉलेज में प्रवेश देते समय प्राथमिकता दी जाती है, और अगर आप चाहें तो अपने हिमांशु को भी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।
0: लेकिन उसे अंग्रेजी ही पढ़ाने का प्रयास क्यों?
2: सच बात है, आपका सोचना बिल्कुल सही है दादाजी, मुझे तो साहित्य में रुचि है, हिंदी साहित्य की पढ़ाई करनी है मुझे।
1: चुप रहो, तुम्हें

0: कौन है?
1: नमस्ते जी, कौशिक साहब घर पर हैं?
0: जी नहीं, अभी बाजार से नहीं लौटे।
1: साहब को देने ये बैग लाया था
0: बैग? इसमें क्या है?
1: जी। वो कुछ खास बात नहीं, ठेकेदार साहब ने त्योहार की मिठाई भिजवाई है। लीजिए साहब के लिए ये गुलदस्ता भी। अच्छा तो मैडम मैं चलता हूँ।

0: अरे भाई तनु, आज घर में इतनी शांति कैसे?
1: हाँ जी, इस घर में तो हमेशा अशांति ही रहती है, हंगामा जो होता रहता है।
0: ओ आई सी, लगता है आज वातावरण कुछ गर्म है। तनु, ये हिमांशु कहाँ है?
1: क्लास अटेंड करने गया है,
0: और बाबूजी?
1: बैठे हैं अपने कमरे में।
0: ओ, इसका मतलब ये इस वक्त यहां हम दोनों ही हैं।
1: ए इंजीनियर साहब, कोई गड़बड़ करने का नहीं मांगता।
0: अब भाई, इंसान है तो भावनाएं हैं, और ये भावनाएं हैं तो प्रेम की चाहत है।
1: ओफो, आज ये क्या हो गया है आपको?
0: तनु, आज मैं बेहद खुश हूं।
1: क्यों, ऐसा क्या हुआ?
0: तुम्हें पता है, हमारे नगर पर जो नदी बहती है ना, उस पर रेलवे पुल बनने वाला है, और इस पुल के निर्माण की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है।
1: औरों को नजरअंदाज करके?
0: हाँ,
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि मैं उस बाबा का बेटा हूं जो त्यागी, निस्वार्थी और स्वाधीनता सेनानी है, इसलिए।
1: अरे हाँ, अच्छी याद आई, आज एक आदमी आपके लिए फूल दे गया है।
0: फूल?
1: हाँ ये देखिए ना, कितने ताजे ताजे सुंदर गुलाब हैं।
0: लेकिन श्रीमती जी, जरा संभल कर, आजकल फूलों में बम भी छिपे होते हैं।
1: आप भी बस यूं ही कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, भला इतने नाजुक फूलों में बम छिप सकता है? अच्छा अब आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ।
0: ओके मैडम। कौन?
2: माफ करिए, आप ही इंजीनियर कौशल साहब हैं ना?
0: हाँ, लेकिन आप?
2: नमस्ते सर, वो फूल पसंद आए क्या सरकार?
0: अच्छा, तो आप ही लाए थे वो फूल?
2: जी हजूर।
0: लेकिन किस लिए?
2: अच्छा सरकार, मैं चलता हूँ, नमस्ते।
0: तनु, यही था वो आदमी जो फूल लेकर आया था,
1: जी
0: और साथ में ये मिठाइयों का बैग भी।
1: जी हाँ,
0: कौन है ये आदमी?
1: मुझे क्या पता,
0: तो फिर एक अपरिचित से ये सब क्यों लिया?
1: आखिर मैं भी इंसान हूँ और इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है।
0: लेकिन कभी कभी जरा सी गलती भी इंसान की जिंदगी का पूरा गणित ही गलत कर देती है।
1: अब गलती हो गई तो हो गई।
0: शट अप, एक शब्द भी आगे बोली तो। एक तो गलती करती हो और उस पर उठ सर उठाकर कहती हो कि गलती हो गई तो हो गई। सच तो यह है कि
3: अरे विक्रम, क्या हुआ, इतना क्यों चीख रहे हो?
0: कुछ नहीं बाबूजी, कुछ भी तो नहीं।

0: कौन है?
1: नमस्ते सर।
0: तुम?
1: जी सर, अपने मालिक की ओर से धन्यवाद देने आया था। हमारा टेंडर पास हो गया ना सर, उसके लिए।
0: ठीक है, अब आप
1: सर, सच बात तो यह है कि और भी बड़ा मिठाई का बैग लाने वाला था।
0: क्या अब आप यहां से जाएंगे भैया?
1: जा ही तो रहा हूं सर। नमस्ते।

0: विक्रम, इतना बेचैन क्यों है? क्या हुआ?
1: बाबूजी, नदी पर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है।
0: और शायद कॉन्ट्रैक्ट

0: का ही आदमी आया था अभी।
1: हाँ बाबूजी, लेकिन इस बदनाम कॉन्ट्रैक्टर का काम लोगों की राय में ठीक नहीं होता। सोचता हूँ यदि इसका काम ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा।
0: अरे कुछ नहीं होगा, तुम उसके काम पर पूरी नजर रखो बस।
1: बाबूजी, हम सबको आपका कितना सहारा है।
0: हिमांशु, अरे ओ हिमांशु, कहाँ है तू? अच्छा तो यहाँ बैठा है। अरे देख तो, तेरा 12वीं का रिजल्ट आया है, ये देख।
2: मुझे तो कल ही पता चल गया था दादाजी।
0: अच्छा, अरे विक्रम, बहुरानी, तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है।
1: ठीक है बाबूजी, लेकिन

0: तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है।
1: ठीक है बाबूजी, लेकिन अब इससे आगे।
0: ऐसे निराश क्यों होते हो बेटे? आगे पढ़ना चाहता है सो उसे पढ़ने दो।
1: सुनिए जी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हिमांशु के एडमिशन की मैंने सारी व्यवस्था कर ली है।
2: क्या, कैसे?
1: इससे आपको क्या करना है, आप हिमांशु को साथ लेकर जाएंगे और एडमिशन दिलाएंगे बस।
2: तुम?
0: जी सर। वो हिमांशु बाबू पास हो गए हैं ना, उनके लिए फूल और मिठाई।
2: मिठाई?
0: सर यह तो खुशी की बात है, जैसा आपका लड़का वैसा ही मेरा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर अच्छा नमस्ते।
1: बाबूजी, पुल तो बन गया है, लेकिन हमें संदेह है कि इसमें सही सामान नहीं लगा है।
3: छोड़ो भी आप, सबको ठीक करने का क्या आपने बीड़ा उठाया है? बेचारा हिमांशु के पास होने पर मिठाई दे गया है, गुलदस्ता भी दे गया है।
1: तनु, तुम नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग बड़े ही मक्कार होते हैं।
3: देखो जी, उसने जो गुलदस्ता दिया है उसमें एक सोने का हार भी रखा हुआ था, बेचारा छुपा के दे गया है। आप उसके काम में रोड़ा ना बनो, हिमांशु के एडमिशन की व्यवस्था भी इसी के मालिक ने की थी।
1: बहुत बुरा किया तनु तुमने, बहुत बुरा। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
3: सब ठीक ही होगा, तुम तो चिंता छोड़ो।
1: ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर भी हो सकती है क्योंकि आज ही पुल का उद्घाटन भी है। और हाँ, हिमांशु कह रहा था कि उद्घाटन के दिन वो पुल देखने जाएगा, उसे भेज देना।
3: अच्छा भेज दूंगी।
0: बहू जरा रेडियो तो लगा दो, समाचारों का वक्त हो गया है। मेरा हिमांशु होता तो ठीक वक्त पर लगा देता।
3: लगा रही हूँ बाबूजी।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि कोल नगर की नदी पर हाल ही में बनाया गया पुल उद्घाटन के समय ही टूट गया। उद्घाटन के समय पुल से गुजर रही एक कार के नदी में गिर जाने से उसमें सवार लोगों के मरने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है।
3: क्या नदी का पुल टूट गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये समाचार गलत है बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
0: धीरज रखो बहू,
3: कभी नहीं हो सकता।
0: धीरज रखो, मैं अभी मालूम करवाता हूँ।
3: बाबूजी मेरा सुहाग तो सुरक्षित होगा ना, मेरा अंकुर, आपकी वंश बेल का फूल, मेरा हिमांशु।
0: भगवान पर भरोसा रखो बहू।
3: बाबूजी।

0: बाबूजी, मेरा हिमांशु चला गया, मेरा सुहाग चला गया। मैं नहीं प्राण लिए हैं उनके, मैं ही कारण हूँ इस दुर्घटना का। ऐसा कैसे हो गया बाबूजी, ऐसा क्यों हुआ?
1: ऐसा ही होता है बहू। हर दुर्घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, लेकिन उसे तब जान पाते हैं जब अनहोनी हो जाती है।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिना कौशिक की लिखी झलकी गुलदस्ता। इसमें भाग लिया नागेंद्र कुमार, सरिता शर्मा, सचिन कौशिक, विजेंद्र सिंह अटौरिया, दिनेश दिवाकर और मोहन सिंह ने। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश सिंह।

केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह जी। सिंह साहब आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार देवराज जी, और ये कार्यक्रम में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी आशा, उमंग और उत्साह होता है कि आज हम अपने आकाशवाणी मथुरा
0: जी
1: उन श्रोताओं से संवाद करेंगे जिनके साथ हम पूरा सप्ताह गुजारते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, चाहे वो फोन इन हो या हेलो स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो। तो बहुत सारी ऐसी उम्मीदें रहती हैं कि श्रोता हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ बात करेंगे, कुछ सुझाव देंगे। और देखो ये बात चली रही है कि आपका जो है घंटियां
0: बजने लगी हैं, श्रोताओं से करते हैं बात।
2: हेलो,
0: नमस्कार
2: जी। दीक्षित जी नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर। सर मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: जी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह जी।
2: सिंह साहब नमस्कार।
1: नमस्कार चौधरी साहब, आप कैसे हैं?
2: जी सर हम बढ़िया हैं, आप बताएं आप कैसे हैं सर?
1: हम भी ठीक हैं और आपसे मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं, श्रोताओं के जो सवाल जवाब होते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया का निश्चित तौर पे हम पूरे सप्ताह इंतजार करते रहते हैं कि जो कार्यक्रम बने हमारे श्रोता उसको किस तरह ले रहे हैं, क्या कुछ अच्छा लग रहा है और नहीं भी लग रहा तो फिर हमको बताएंगे। तो इस सप्ताह जो कार्यक्रम प्रसारित हुए उस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे हैं।
2: ऐसा है सर, आकाशवाणी कार्यक्रम अच्छे दे रहा है और हमें सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, पर इस समय हम आपसे एक अनुरोध करेंगे सिंह साहब।
1: जी जी।
2: सावन को महीना है, केंद्र से जो लोक धुनें बजाई जाती थी ना वो बजनी चाहिए, कुछ मलार भी। और जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते आए कि सावन के महीना में अगर रांझा गायन रेडियो पे मिल जाए तो समझ लो सारे रोग धोग मुक्त है जाए, दूर है जाए।
1: चलिए आपका सुझाव है, आपने याद दिलाया, ये भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मल्हार भी सुनाई देंगी और रांझे का भी आप आनंद ले पाएंगे निश्चित तौर पे। तो ये सावन का महीना शुरू हुआ है, जरूर ये दोनों फरमाइशें आपकी पूरी करेंगे और आपके साथ बाकी जो श्रोता है निश्चित तौर पे वो भी इस उसका आनंद उठाएंगे। आपने याद दिलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
0: और सिंह साहब, दोपहर 12:30 से हमारे यहाँ जो लोकगीत का कार्यक्रम होता है उसमें हम अक्सर मल्हारें इस समय सुनवा भी रहे हैं।
1: जी जी जी। तो जो सुनवा रहे हैं वो तो बोनस है, लेकिन इन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पे सावन के कार्यक्रम चाहे किसी भी विधा के हों वो जरूर आप तक पहुँचेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।
2: मैं आपको एक बात कहूँ,
0: जो
2: सावन मास में हम जानते हैं कि आप मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल ही अपने प्रोग्राम प्रसारित करते रहे और करते रहेंगे ऐसी उम्मीद है
1: जी।
2: लेकिन सावन मास में मलारों का बड़ा महत्व है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये है सिंह साहब, सावन मास में जो मैंने आपको रांझा गायन की बात कही है ना, तो एक भगवान दास है, भगवान दास और उनके साथी यहाँ से पहले भी हम श्रृंखलाबद्ध मतलब रांझा सुन चुके हैं।
1: तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपको सुनवाएंगे और आपकी अपने नाम भी ले दिया है अब तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये कार्यक्रम आपको जरूर सुनने को मिलेगा, आपने याद दिला दिया, ये बहुत यही श्रोताओं की हम उदारता समझते हैं कि वो अपनी जो हमें याद दिलाते हैं।
0: बिल्कुल। तो और सिंह साहब मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जिन कलाकारों का नाम ले रहे हैं भगवान दास अज्ञानी जी,
1: जी
0: आज शरीर से हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका गायन हमारे पास आज भी सुरक्षित है, आर्काइव वैल्यू का है और हम श्रोताओं को अवश्य सुनवाएंगे।
1: जी तो ये कार्यक्रम आप तक जरूर पहुंचेगा और अच्छा लगेगा और आप प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे, इसके लिए फिर पुनः आपका धन्यवाद देंगे। अभी आप जुड़े फोन के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: रामेश्वर बोल रहा हूँ सर, जरौली सासनी से।
0: जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में?
3: आपके प्रोग्राम सारे सुनता हूँ और बहुत

0: से सुनता चला आ रहा हूँ। मेरी एक सुझाव है सर मेरा।
1: जी जी आप स्वागत है आपके सुझाव का, बताइए।
0: नमस्कार जी।
1: जी प्रणाम कर रहे हैं।
0: मैं ये चाह रहा हूँ जैसे शुक्रवार को आप नवरंग कार्यक्रम देते हैं 9:15 तक, ऐसा एक और प्रोग्राम सर हफ्ते में एक और होना चाहिए 10 बजे के आसपास।
1: चलिए अगर जगह होगी, आपने 10 बजे की बात कही है तो अगर कुछ बन पड़ेगा तो जरूर आपकी सेवा करेंगे।
0: एक और बात कहना चाहूंगा सर जी,
1: जी जी
0: जैसे हमारे दीक्षित जी हैं और सारस्वत जी हैं, ये नवरंग कार्यक्रम से कुछ दूरी बनाए हुए हैं सर, इनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम थोड़ा अधिक आनंद आता है।
1: अब ये काफी वरिष्ठता के क्रम में आ गए तो दिन में ही आते हैं और इनकी बनाई हुई आपको हेलो पहुंचती होगी।
0: वो तो मैं सुनता हूं सर।
1: शाम की सभा में इनकी सेवाएं कम मिल पाती है, इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कम मिल पाता है। लेकिन अब एक आपने कहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा प्रस्तुत कोई फिल्म संगीत का वैसा कार्यक्रम जो कंपेयर्ड हो लोगों के साथ, वो हो या मौसम विशेष हो या थीम विशेष हो, उस तरह का बनवा के कभी शाम को किया जा सकता है।
2: जी
1: आपने अच्छा सुझाव दिया है और इनकी सेवाएं और इनका जो आवाज है वो शाम के श्रोताओं को भी सुने, ऐसा हमें भी अच्छा लग रहा है तो सोचेंगे।
0: ऐसा आवाज लगती है साहब इन दोनों की।
1: जी नहीं, ये हमारे पुराने प्रसारण कर्मी है और बड़े डेडिकेटेड हैं, मतलब काम को जब तक उस परफेक्शन तक नहीं ले जाएंगे तब तक छोड़ते नहीं है, कोई भी कमी जी नहीं होती है, तो वो निश्चित तौर पर फिर आपको अच्छा लगता होगा उसमें।
0: जी नमस्कार।
1: जी प्रणाम।
2: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत आपका।
3: धन्यवाद। मैं एस के चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, महाविद्या कॉलोनी मथुरा से।
1: जी चतुर्वेदी प्रणाम कर रहे हैं आपको।
3: ओपी सिंह जी बोल रहे हैं।
1: मैं आपका छोटा भाई।
3: अरे देखो आपके आवाज से ही पहचान लेता हूँ मैं जो है।
1: ये आपकी उदारता है कि आप हमको पहचानते हैं आवाज के बारे में।
3: आवाज ही आपकी पहचान है।
1: मैंने कहा ना ये आपकी उदारता, आपका नजरिया है।
3: मैंने बात की थी उस दिन देवेंद्र सारस्वत जी को।
1: जी
3: तो वहाँ पता लगा कि अभी आपने चार्ज ले लिया है वहाँ पर।
1: अरे साहब हम तो कार्यकर्ता लोग हैं और देखो प्रसारण कर्मी कभी कोई चार्ज सिप नहीं होती, हम कार्यक्रमों में आपके माध्यम से लगे रहते हैं, बस सेवा आपकी हो जाए अच्छे से, यही हमारा उद्देश्य रहता है जो है।
2: जी चतुर्वेदी जी कार्यक्रमों के बारे में बताएं क्या कहना चाहेंगे।
3: कुछ अपने घर की वजह से अभी पारिवारिक से बहुत परेशान था, बिजी था
1: जी,
3: तो फोन नहीं कर पाया, तो मैं आज फोन कर रहा हूँ।
1: चलिए चलिए तो आज आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
1: जी।
3: ये आपके जो प्रोग्राम आ रहे हैं ये तो बड़े अच्छे ही प्रोग्राम है, लेकिन एक हमारी ये आग्रह है कि ये जो हेलो आकाशवाणी का है ना, ये आपका बहुत फेमस हो गया है।
1: हाँ।
3: और बहुत दूर दूर से फोन आते हैं इसमें।
1: जी जी।
3: तो इसका थोड़ा टाइम बढ़ाने का कुछ हम आपसे आग्रह कर रहे हैं।
1: चलिए अब जब कभी ऐसा बनेगा जो अपनी फिक्स पॉइंट चार्ट होता है या स्थायी तालिका होती है तो ये बहुत ज्यादा मांग है, श्रोताओं की मांग है, तो अगर मिलता है थोड़ा बहुत समय ज्यादा तो देखते हैं कहीं परिवर्तन में थोड़ा समय मिल जाए तो इसको देखते हैं उसमें, है ना।
3: ये इकलौता प्रोग्राम है जो फरमाइशी है।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
3: पहले जो है एक शाम सुहानी प्रोग्राम आता था।
1: नहीं वो तो अभी भी आ रहा है।
3: नहीं वो भी अभी तो आ रहा है लेकिन उसमें अंतर हो गया है। पहले तो जो है जैसे हेलो आकाशवाणी है ना वैसे ही था, एक आदमी हमने हेलो किया, हमारी फरमाइश आई, हमारा नाम आ गया खत्म।
1: वो व्हाट्सएप पे आधारित है एक्चुअली, व्हाट्सएप कॉल लेते हैं।
3: हाँ इसमें जो नंबर बहुत आते रहते हैं।
1: जी जी जी।
3: तो फरमाइश बहुत आती है चारों तरफ से। बम्बई का विविध भारती का प्रोग्राम है ना।
1: हाँ।
3: उसमें ऐसे ही आता है।
1: इन लोगों की मेहनत है, देवराज जी हैं, संजय हैं, रश्मि मैडम है और भी बीच बीच में चंद्रिका आती है, तो ये इतना अच्छा आप लोगों के साथ बात करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आप इनके साथ जुड़ते हैं, प्रोग्राम अच्छा बन पड़ता है। ये आप लोगों की मिली जुली सी में मुझे ऐसा लगता है और स्टेशन का नाम हो रहा है आकाशवाणी मथुरा का नाम हो रहा है इसमें।
3: नहीं ये बड़े कर्मठ और बड़े कर्मियों के सभी हैं लोग,
1: समर्पित कार्यकर्ता हैं हमारी,
3: समर्पित कार्यकर्ता हैं।
1: जी जी से।
3: इसमें दो राय नहीं है तो हमने ये आग्रह किया है, आप देखिएगा अगर हो सकता है।
1: बिल्कुल क्योंकि श्रोताओं के लिए ही आकाशवाणी है, जो कुछ अच्छा बन पड़ेगा जरूर हम करेंगे। बाकी आज आप जुड़े, सुझाव दिए और फोन किया इसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत।
3: आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री कृष्णा,
1: प्रणाम।
4: हेलो सर।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार सर।
2: कौन साहब बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
4: नासिर खान बोल रहा हूँ, मनियारा से।
2: खान साहब स्वागत है कार्यक्रम में, कहिए क्या कहना।

0: चाहते हैं कार्यक्रमों के बारे में?
1: सर सब मैं आपके कार्यक्रम 30 वर्षों से सुन रहा हूँ।
2: तो आज तो फरमाइश का नहीं है, लेकिन फिर भी कोई छोटी फरमाइश हो तो बताइए, आपकी क्या है?
1: सर तीसरी कसम फिल्म का गाना है, सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।
2: अच्छा अच्छा, तो देखो हम तो झूठ नहीं बोल रहे, सच ही बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं श्रोताओं के साथ ही बोल रहे हैं, लेकिन गाना
1: बहुत अच्छा लगा सर, मेरा फोन मिल गया।
2: चलिए ठीक है,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत खुशी होगी सर,
2: इस गाने का आनंद लीजिए आप।
1: ठीक।

0: जी सिंह साहब, हमारे श्रोताओं ने फोन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, सुझाव रखे, और जो श्रोताओं को लगता है कुछ कमियां चल रही हैं वो भी खुले मन से हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई।
1: बिल्कुल, और उनकी जो सुझाव हैं और उनकी जो इशारा होता है
0: जी
1: के बारे में, निश्चित तौर पर उससे अच्छा करने की, बेहतर करने की और कुछ नया करने की जो उम्मीद है वो हमेशा बनी रहती है, वो आपके लिए भी, व्यवस्था के लिए भी, स्टेशन के लिए भी। तो केंद्र का इस कार्यक्रम का मैं समझता हूँ शायद उद्देश्य भी यही है कि हम अपने श्रोताओं की जो फरमाइश है, उनके सुझाव हैं, उनकी शिकायतें, उनकी जो जरनबाजी,
0: बिल्कुल
1: उससे हम अपने आप को का जो मनोबल है उसको बेहतर बनाएं। और देखो, एक व्हाट्सएप
0: संदेश,
1: हाँ, चलते चलते समय तो कम है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, और वो ही उनकी पुरानी मांग है। हमारे प्रकाश राही जी हैं गोवर्धन से,
0: जी
1: यही लिख रहे हैं कि भाई आपका थोड़ा किसान वाणी में भी परिवर्तन हो गया, और जो जहाँ ये रास्ते जिंदगी के थे वहाँ भी आप डॉक्टरों का कार्यक्रम करते हैं, तो हमारा जो एक ये रास्ते जिंदगी का कार्यक्रम था वो आप कह भी रहे थे कि शुरू करेंगे लेकिन अभी कर नहीं पाए, तो इस पे ये कह रहे कि अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये एक अच्छा सुझाव है। हमने इनसे वो भी कहा था कि एक आश्वासन दिया था, निकट भविष्य में देखते हैं कि अगर
0: क्या
1: ये हो पाया तो जरूर करेंगे, और अच्छा सुझाव है, वो कार्यक्रम भी अच्छा था। इस बहाने जो हमारे कुछ नए श्रोता और जुड़ पाएंगे, जान पाएंगे, तो इसके लिए सुझाव के लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं।
0: जी जी, एक संदेश और मेरे पास व्हाट्सएप संदेश आया हुआ है, उसको भी पढ़ देते हैं। ये संदेश है बलवीर सिंह जी का, और ये एक जानकारी चाह रहे हैं, हाथरस से लिखा है इन्होंने ये संदेश के, सावन के महीने के बाद भाद्रपद मास लगेगा, उस ब्रज में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: आपके यहाँ से जो सीधा प्रसारण होता है आंखों देखा हाल, क्या इस वर्ष भी आप सुनवाने की व्यवस्था करने वाले हैं?
1: जी जी, ये तो महत्वपूर्ण प्रसारण है, और इस महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए आकाशवाणी मथुरा ही जिम्मेदार है
0: जी,
1: वो ही व्यवस्थाएं करता है। तो जानकारी इन्होंने चाहिए तो बता देते हैं कि इस बार 4 सितंबर को
0: जी
1: ये पर्व पढ़ रहा है, और रात को 11:10 की न्यूज के बाद
0: जी
1: ये लाइव कमेंट्री सुन सकते हैं, और वो 12:15 रात्रि के समय तक चलेगी
0: जी जी,
1: तो लगभग 65 मिनट की कमेंट्री जो आकाशवाणी आयोजित करता है जन्मभूमि
0: और द्वारकाधीश
1: मंदिर से, तो इस बार भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। और इन्होंने मतलब इतना पहले पूछा है
0: जी,
1: तो
0: जी, जी।
1: हम इस बात को बता रहे हैं कि इस बार मथुरा आकाशवाणी इस कार्यक्रम को पुनः संचालित करेगा या आयोजित करेगा।
0: जी जी जी, यानी हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं और बहुत ध्यान रखते हैं इन
1: जी,
0: सब चीजों
1: जी,
0: का।
1: जी जी जी, तो अभी तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इतना ही समय है, देवराज जी के समय हो रहा है।

0: तो कुछ
1: जी
0: पता बता दिया जाए और कुछ नंबर बता दिया
1: चलते
0: जाए।
1: चलते हम श्रोताओं को फोन नंबर बताए देते हैं। हमारा फोन नंबर है 2530135, और मथुरा से बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड रहेगा 0565। और फोन करने का जो समय है वो शुक्रवार के दिन 12:30 से रहेगा।
0: जी व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो 94-122-25-575 नंबर पे अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, कार्यक्रमों पे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं,
1: जी
0: और जो भी आपकी शिकवे शिकायत है वो लिख करके हमें भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए भी वही है, फोन कॉल्स के साथ श्रोताओं की बात
1: जी
0: द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा पिन कोड 281003 पर पत्र भी आप लिख सकते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं।
1: तो अगले सप्ताह तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ यह गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था घराना। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत दिया था रवि ने। और आइए अब सुनते हैं श्री 420 फिल्म का ये गाना है, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म बरसात की रात के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one who accused in connection with C.

समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एस वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवावरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की

0: लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

0: जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
5: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 10 अगस्त सन 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम

में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी जुखाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 10 अगस्त सन 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था शोर। इसके बोल लिखे थे संतोष आनंद ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म साथी से। इस गीत को गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत नौशाद साहब का है।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था ब्लैकमेल। बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म शोर का ये गीत, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। इसका जो उद्देश्य था अंग्रेजों की ट्रेन से सवारी खजाना लूटकर हथियार खरीदना और देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना। मुख्य बातें थीं क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर इस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत चली गई थी, हिल गई थी। बाद में प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। ये कुछ बातें थीं काकोरी कांड के इतिहास और जानकारी के बारे में। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा था। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हर वर्ष 9 अगस्त को बरसी बनाई जाती है। इसका जो इतिहास है, 9 अगस्त 1925, स्थान काकोरी रेलवे स्टेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रमुख क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ।

0: आपने सुना फिल्म शक्ति का ये गीत।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
5: आइए सुने अजय नारायण गुप्ता की लिखी झलकी रमते राम, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

0: क्यों भाई मेरा काम अब कब होगा?
1: हाँ भैया, कह दिया ना कि मंगल के बाद शुक्र को आना, तब तक राम भरोसे रहो। तुमसे कहा ना कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे आज तो बॉस जल्दी दफ्तर में आ गए, राम कसम।
0: ये बड़े साहब हैं।
1: हाँ।

0: जी सभा भी है,
1: देखने से ही बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं
0: और बड़े दिलेर हैं और दिल फेंक भी हैं।

तबादला रुकवा चुके हैं। कह दिया कि पहाड़ पर जाकर हम क्या करेंगे, मैदान में रहे हैं और मैदान में ही रहेंगे।

0: अभी ट्रेन आने में कितना समय लगेगा?
1: सर, आप अपने दफ्तर में हैं, लगता है आप किसी रेलवे स्टेशन का सपना देख रहे थे।
0: सपना?
1: हाँ हाँ सर।
0: सपना क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मैं सो रहा था? हो घीसू, तुम्हें किस मर्दूत ने नौकरी में भर्ती किया? मतलब मैं सो रहा था, तुम्हारा मतलब यह है कि मैं सो रहा था? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं?
1: राम कसम, आप सचमुच 100% सो रहे थे साहब।
0: ओफो घीसु, मैं नहीं तुम सो रहे थे। बताओ तुम सो रहे थे कि नहीं?
1: नहीं साहब, मैं नहीं सो रहा था। मुझे दफ्तर में नींद कहाँ आती है, और अगर आपको विश्वास ना हो तो पता कर लीजिए दफ्तर वालों से।
0: बकवास मत करो, जो कहता हूँ सुनो। मैं ये कह रहा था कि तुम सठिया गए हो। बहुत शिकायत मिली है मुझे तुम्हारी।
1: ये मेरी शिकायत मिली है आपको सर?
0: हाँ हाँ, तुम्हारी शिकायत। तुमने दफ्तर का माहौल खराब कर रखा है। कान खोल कर सुन लो खींचू, ये सब अब नहीं चलेगा, समझे? चले जाओ यहाँ से, मैं समझाऊंगा तुमको।
1: सच ही कहा है किसी ने कि अफसर के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। कहते हैं मैं सो रहा था, या तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को झपटे। हे भगवान, हे दीनानाथ, हे प्रभु, ये भी कोई नौकरी है?
2: क्या हुआ चपरासी जी, उदास किस लिए हो गए?
1: अरे क्या बताऊं कद्दू।
2: अरे मेरा नाम कद्दू नहीं, दद्दू है, दद्दू।
1: हाँ हाँ दद्दू, ये साहब लोग भी रेलगाड़ी की इंजन की तरह होते हैं, हर समय धुआं देते रहते हैं। जब किसी पर बस नहीं चलता तो मुझे पकड़ लेते हैं।
3: क्या?
1: हाँ,
3: तुम्हें पकड़ लिया?
1: हाँ
3: साहब ने तुम्हें पकड़ लिया?
1: हाँ। अरे भैया, यही तो नौकरी है। बज गई मेरी जान की दुश्मन, बज गई। आया आया सर आया। ये साहब तो अजीब तबीयत का आदमी है, हंसने भी नहीं देते और रोने भी नहीं देते। राम कसम जी साहब आया।
0: घीसू सिंह।
1: हाँ साहब।
0: वो मिस लाली से कहो कि जूता कंपनी का जवाब और डायरी जल्दी तैयार करे।
1: जी जी साहब, ऐसा है कि मिस लाली तो अभी आई ही नहीं, और जब आ जाएंगी तो मैं साहब बता दूंगा।
0: क्या मतलब, लाली अभी तक दफ्तर नहीं पहुंची? ठीक है, जिसकी जो मर्जी आए वो करे, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझे? तुम देखना।
1: देखता हूँ साहब।
0: अरे अभी नहीं, मैं कहता हूँ बाद में देखना। जब मैं इस दफ्तर से चला जाऊंगा तब घीसू सिंह इस दफ्तर के लोग मुझे याद करेंगे। हाँ, वो सुरेंद्र और मनहर अपनी सीट पे है कि नहीं?
1: अभी साहब वो लोग भी दफ्तर नहीं आए हैं।
0: नहीं आए? तो इसका मतलब ये है कि इनको भी हराम खोरी का चस्का लग गया है।

0: जी
1: ये लोग अक्सर लेट आते होंगे, कुछ बता सकते हो कि ये लोग लेट क्यों आते हैं?
0: जी
1: बताओ बताओ। देखो ये अच्छी बात नहीं है ना।
0: साहब बात दरअसल ये है कि अभी लॉटरी बाजार में गए होंगे, फिर 12 बजे जब बार खुलेगी तो मूड मार्ट बना कर दफ्तर आएंगे।
1: बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है खीसू सिंह, बहुत बुरी बात है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लोगों को काम चोरी करने की आदत होती जा रही है। अच्छा सुनो, मैं जाता हूँ, अभी वो सेंटर पॉइंट होटल में बैंक की मीटिंग है।
0: जी साहब
1: अभी आता हूँ। और लाली और मनोहर और सुरेंद्र को सचेत कर देना कि ये सब नहीं चलेगा, समझे? अच्छा मैं चला।
0: चले गए हवा की तरह, आए और तीर की तरह निकल गए। एक मैं ही अकेला मूर्ख हूँ जो दफ्तर में आकर सभी की खरी खोटी सुनता हूँ।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: जंतुरू।
2: आप तसल्ली से बैठी, मैं बॉस को इन्फॉर्म करती हूँ।
0: आपका नाम बड़ा टेढ़ा है, फंतुरू।
3: फंतुरू

0: अच्छा जंतरु, ये क्या होता है?
1: यस मिस्टर जंतरु, अभी साहब बिजी हैं, इंतजार कीजिए। लीजिए, तब तक आप चाय पीजिए।
2: चाय? अरे क्या लगता है इस दफ्तर में सभी लोग चाय पीते रहते हैं? मैं देख रहा हूँ, इसीलिए ये अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और ज्यादातर सीटें खाली हैं।
1: हेलो, यस फास्ट इंडिया। हाँ हाँ हाँ
2: हाँ, तो तुम बताओ दफ्तर में लोग नजर क्यों नहीं आते?
3: क्या बताएं साहब, देखिए किसी से कहिएगा नहीं। ये दफ्तर तो हराम खोरों और कामचोर लोगों की शरण स्थली है।
2: हाँ
3: अच्छा, एक से एक आराम पसंद है साहब। हमारे किलोग्राम है तो लाली 4 किलोग्राम है, बाकी सब 20-20 किलोग्राम है।
2: अर्थात लोग दफ्तर नहीं आते?
3: आते तो हैं, लेकिन अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। ये बात दीगर है कि रजिस्टर पर सभी हाजिर हैं। बस बस जंतरु,
2: जंतरु नहीं जंतरु।
3: हाँ हाँ जंतरु, लाली आ रही है, चुप हो जाइए।
1: अच्छा ये बताइए, आपको किस सिलसिले में सर से मुलाकात करनी है?
2: मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें अपने काम के प्रति समर्पित लोगों के ख्यालात पर सर्वेक्षण किया जा रहा है।
1: ओहो, जरूर कीजिए सर्वेक्षण। हमारे दफ्तर में सभी लोग काम के प्रति बेहद समर्पित हैं। हमेशा काम में खोए रहते हैं।
2: अच्छा,
1: हमारे बॉस का इस समर्पण में खास योगदान है।
2: यानी आपका दफ्तर भी इस शहर में एक अजूबा दफ्तर है। वाह, क्या दफ्तर है।

0: Hello, Lali. How are you?
1: Oh, Ragini, I am fine. कहो कैसे आना हुआ?
0: मैंने सोचा आज शॉपिंग कर ही ली जाए। दरअसल वो मेरा बॉस है ना, आज कहीं चला गया, सो मैं भी यहाँ चली आई। वो क्या है, दफ्तर में तो मेरा मन लगता ही नहीं है।
2: हो लाली, रागनी, तुम दोनों? हाँ, मैं भी दफ्तर से आ गई। चलो शॉपिंग करने चले।
1: हाँ ठीक है, दफ्तर को मारो गोली, चलो चलते हैं।
3: अरे हंसती ही रहोगी या बताओगी मेरा क्या हुआ?
1: हाँ हाँ मिलवाए देती हूँ, लेकिन ये आपके बैग का साइज इस कदर इतना बड़ा क्यों है?
3: बस बड़ा शहर है ना, बड़ा बैग रखना पड़ता है, बड़े बड़े बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है।
4: फंतरु साहब।
3: फंतरु नहीं, जंतरु, जंतरु, जंतरु।
4: हाँ हाँ जंतरु साहब, चलिए साहब से मिल लीजिए।
3: लेकिन इससे पहले आप लोगों के विचार भी जानना चाहता हूँ इस देश के बारे में।
1: ये देश बहुत सुंदर था, सुंदर है और सुंदर ही रहेगा।
0: इसका तो बच्चा बच्चा खूबसूरत है, डाली डाली खूबसूरत है।
3: दरअसल मेरे इस बड़े आकार के बैग में लाई डिटेक्टर है।
4: फंतरु साहब।
3: अरे फिर फंतरु का, हम तो मुसीबत में आ गए। फंतरु नहीं, जंतरु।
4: हाँ हाँ जंतरु साहब, ये लाई डिटेक्टर क्या है?
3: लाई डिटेक्टर।
4: अच्छा,
1: लेकिन आप इसे हमारे दफ्तर में क्यों लाए हैं?
5: ए मिस्टर, क्या बात है भाई, किससे मिलना चाहते हैं आप?
1: सर, ये है मिस्टर जंतरू।
5: ओह,
1: ये आपसे मिलना चाहते हैं।
5: मगर किस लिए?
6: बस यूं आप समझ लीजिए, यूं ही मिलना चाहता हूं। मेरे पास लाई डिटेक्टर है।
5: अच्छा,
6: जो आप लोगों की दफ्तर की जिंदगी में चल रहे झूठ सच का पता लगाती है।
5: आप कहना क्या चाहते हैं?
6: यही कि आपका दफ्तर काम चोर और हराम खोरों की शरण स्थली है, अर्थात रिकॉर्ड में सभी हाजिर हैं, मगर वास्तव में सभी अपने अपने मजे में खोए हैं।
5: ओ समझा समझा, आप रमते राम है ना?
3: तो आपने पहचान ही लिया।
5: लेकिन आप बैठे क्यों हैं? क्या लीजिएगा? आइए आइए, मेरे चैम्बर में आइए हुजूर, आइए। रमते राम जी, प्लीज प्लीज।
6: रमते राम आप सभी को नमस्ते करता है। आप सभी के बयान और इस दफ्तर की कार्य प्रणाली का रिकॉर्ड लाई डिटेक्टर में कैद है।
5: है?
6: अब आप मेरी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए।
5: आप तो नाराज हो गए हुजूर, आइए एकांत में कुछ बात कर लेते हैं। रमते राम जी, वो प्लीज।
6: मैं एकांत में? नो, बात करने पर यकीन नहीं रखता, मेरा समय हो रहा है, मैं जाता हूं, जाता हूं।
0: अच्छा लाली, अब मैं भी निकलती हूँ।
1: हाय, उसने मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ली
4: और उसने मुझसे मेरा बयान भी अपने मशीन में लपेट लिया है।
1: घिसू, मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है।
5: ओ, ओ, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही। घिसू, पानी पानी लाओ, पानी नहीं, गिलास गिलास। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? घिसू घिसू।
7: हाँ साहब।
5: मैं टॉयलेट जाता हूँ।
4: अब क्या होगा
1: घिसू, हम सब का अब क्या होगा?
4: होगा क्या साहब का तबादला और क्या?
1: Oh, no, no, no, this is not possible, no.

रमते राम। अभी तक आप सुन रहे थे अजय नारायण गुप्ता की लिखी ये झलकी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे योग माया, योगेश खत्री, नीरू यादव, विनीता रानी, आर के

0: त्रिपाठी, यतीन्द्र चतुर्वेदी और सुरेश गुप्ता। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के त्रिपाठी।
1: दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के युग में तकनीकी शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। तकनीकी शिक्षा युवाओं में व्यवहारिक कौशल विकसित करने का मुख्य माध्यम है। इसके जरिए हम छात्रों को कोडिंग, मशीन संचालन, समस्या समाधान जैसे आधुनिक गुण सिखलाते हैं। साथ ही केवल किताबी ज्ञान की बजाय मशीनों और सॉफ्टवेयर पर सीधा काम करना भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। रोजगार के अवसर उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार होने से नौकरी मिलना आसान हो जाता है। साथ ही नई तकनीक को समझकर खुद के लिए विचार या स्टार्टअप आरंभ करना, कंपनियों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करना और काम का अनुभव पाना, कौशल उन्नयन के जो तरीके हैं, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स, डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग और अप्रेंटिसशिप, ये सभी हम अपने युवाओं को दें और युवा इसके साथ इसका ज्ञान अर्जन करें तो वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। और अब इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी को नमस्कार।

हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान

0: चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे उद्धव शतक सोपाठ। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी ममता रानी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और बागवानी फसलों की खेती से आय बढ़ाने के उपाय विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे अपनी पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। प्रादेशिक समाचार 7:20 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकर आएंगे। कार्यक्रम शाम सुहानी फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:31 पर। फिल्म संगीत आप उन्हें सुनेंगे रात्रि 8:00 और 9:16 पर सुहानी तराने के अंतर्गत। एक बार देशकांत हम आपको पुनः सुनवाएंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज की फिल्म है सावन को आने दो। 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर आएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रविवार से ही अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, और आप सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। वंडिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी कल

10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर या मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल विषय के संबंध में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान के संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन है सोमवार 10 अगस्त 2026 अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देशकांड।

0: सामवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है बरस साहित्य कार्यक्रम।
1: सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा भेजे हुए हम ज्ञान योग तथा निर्गुण के बड़प्पन की शिक्षा देने के लिए गए थे। गोपियों की अपार विरहाग्नि एवं वियोग विकल दशा को देखकर न जाने कहां हमारी सारी चतुराई खो गई। उनकी दीर्घ निश्वासों ने हमारे ज्ञान को उड़ा दिया प्रभु, और उनके आंसुओं की धारा में हमारा सारा ज्ञान बह गया। उनके अत्यधिक दुखों के धक्कों से हमारा ज्ञानाभिमान चूर चूर हो गया प्रभु, चूर चूर हो गया, तथा उनकी विरह की तीव्र अग्नि में जलकर हमारी सारी चतुराई भस्म हो गई प्रभु, सारी चतुराई भस्म हो गई।

उद्धव जी मथुरा लौटकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, ब्रजभूमि का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि हम तो कहीं यमुना के रमणीक किनारे पर कुटिया छा लेते और वहां की रमण रीति से कहीं भी गमन न करते। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव ने आगे कहा, गोपियों की प्रेम गाथा को ही गाते और उसी को सुनते, इसे छोड़कर हमारे कानों और जिभ्या को दूसरा रस भाता नहीं, अर्थात कानों से केवल प्रेम की कहानी सुनते तथा जीभ से गोपियों के प्रेम की कहानी कहते, अन्य किसी रस की इच्छा ही नहीं होती प्रभु। उद्धव जी आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, गोपियां तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तथा प्रलय का आना समझकर हम तनिक भी भयभीत न होते। यदि हमारे मन में आपको वहां की दशा बताकर सचेत करने का भाव न होता तो हम ब्रजगांव को छोड़कर

मथुरा की ओर कभी पैर भी नहीं रखते। हे प्रभु, केवल आपको गोपियों की विरह दशा बताने के लिए ही मुझे मथुरा आना पड़ा है, अन्यथा मैं उस ब्रजभूमि को छोड़कर कभी इधर कदम भी नहीं रखता।

अभी आप सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रामशरण वशिष्ठ और जगदीश ब्रजवासी। वादक कलाकार थे बांसुरी पर मोहन श्याम पचौरी, वायलिन पर शकील अहमद, तबले पर गुलाम अहमद, पखावज पर राधा रमन दास, साइड रिदिम सत्यनारायण शर्मा और ऑर्गन पर आशीष कुमार अग्रवाल। संयोजक एवं वाचक यतीन्द्र चतुर्वेदी। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था शिव महिमा। और आइए आप सुनते हैं आशा भोंसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों को फिल्म अवतार में।

आप सुन रहे थे रविंद्र जैन और साथियों को फिल्म गंगा सागर में। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रस ग्रामीण। हाँ भैया देखो, अब तो समय जो है परिवर्तनशील है। राम राम भैया, हमारा कार्यक्रम को समय आपको पता है ना, 6:50 है गए ओए प्रतिदिन। पहले पहले आप सुनते 6:15 पे है कि ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो भैया परिवर्तन जरूरी होते हैं। परिवर्तन ते ही आगे गाड़ी चले। और फिर पता है आपको, और जो हमारे किसान भैया आते हैं वे क्या करते हैं, खेती के संग संग पशु रखते हैं। पशु रखवा भी जरूरी है, देखो दूध है जे सब दही मठा हमें खाए कहाँ मिलेगा बालकन के काज।

कैसे शरीर बनेगा उनको है। तो जब हम गाय भैंस पाल रहे हैं, दूध देवे वाले पशु राखे हमारे भैया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आसपास साफ सफाई जरूर रखें और उनको फर्श है बाकू साफ रखें, पक्को होना चाहिए जाते, और उनकी जो बिछावन है ना बाकू भी आप साफ रखो, या जो कछु बिछामते हैं बाकू हटाए के साफ करो, सफाई पूरी रखो। और सवेरे सांझ को धुआं जरूर कर दे, जाते मक्खी मच्छर पशु को ना लगे, जाते जो पशु आपके दूध देवे बारे हैं जैसे भी आपके पशु हैं उन्हें साफ सफाई को ध्यान रखो, नियमित रूप से नहलाओ। और भैया जिन बर्तनन में आप दूध निकालते हैं जैसे कैन है बाल्टी है, उनको सवेरे शाम दो छाक आप उनको साफ करो, साबुन ते सरफ ते साफ करके रखो। और जो लीटर है और जो आपकी कैन है अच्छी तरह से बाकी सफाई करके रखो जी, बहुत जरूरी है। जब दूध निकाल लेते हैं तो वह संग की संग वह ढकवे को इंतजाम रखो, जैसे कीड़ा पतंगा उड़ते हैं इन दिनों उड़ते हैं, वो तो उड़ते ही हैं, तो विवाह में गिर ना पड़े। तो जाले भैया हम तो आप कहें से जे कहें कि आप अपने जो दूध को उत्पादन करने की जैसे सोच रहे हैं कि क्षमता बढ़ जाए उत्पादन बढ़ जाए, तो बाकी संग संग आपको साफ सफाई को भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जे खाइवे पीवे को सौदा है, हर चीज में सफाई को महत्व है भैया, सफाई के बिना तो कछु भी ना है। और देखो बरसात के दिनों में तो मच्छर वैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो जाले ज़्यादा सफाई रखनी पड़ते हैं ना, और पेड़ पौधा खूब है जाते हैं और देखो कैसे सुंदर लगते हैं बाग बगीचा। और सावन को तो महीना चल रहे हो, हमारी बहन तो झूठा लेते हैं और गाँव उठते हैं हिंडो।

तो भैया मनभावन कार्यक्रम तो आप सुन ही रहे हैं, आज है रविवार को दिन है ना, और अलका राजेश को गाय व्यव सुनो आपने ये मल्हार को। तो भैया देखो झोटा तो हम खूब लेंगे और झूला खूब पड़ेंगे, पर का करना है, अरे बरसात के दिन चल रहे हैं, सावन को महीना है भैया, मनभावन है, खूब मिठाई खाओ सब कर रहे हैं, खूब परकम्मा दे रहे हैं, सबरे तीरथ कर रहे हैं, हैं खूब दान पुण्य कर रहे हैं, पर एक काम और है बड़ो पुण्य को कार्य है जा समय कहा, अरे वृक्ष लगा लियो, कछु पेड़ पौधा लगा लियो, खाली जमीन पड़ी है आस पास घर के, मैं लगा लियो पौधन को भैया, बड़ी छाया देवे, फलू लगते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, फिर झूला पड़ जात काहे तो का होता है, अरे आनंद आ जाते हैं, देखो री मुकट झोंका ले रहे हो जब हमारे श्यामा श्याम झूले ना झूठा देवे तो उनको मुकट टेढ़ो है जावे, बहु संग में झोंका ले उठतु है राधा रानी और हमारे श्यामा श्याम की, वो लीला तो अलग ही निराली है, पर सुने हैं ऐसो ही ये मल्हार, देखो री मुकट झोंका ले रहे हो।

अवधेश चतुर्वेदी के स्वर में सुनो भैयाओ आपने, और पता है सावन को तो महीना है, खूब घेवर फैनी और वो सेमरी चावल लेके जब तक हमारी बहन बेटी आमे ना आए ना, और वे अब संग बांध के ना ले जात सो भई ना बढ़ते, तो हमारी बहन बेटी और कैसे गाय उठते हैं, अरे बहना सुन लियो भैयाओ का कह रही है बहना लोग जल्दी थे।

तो भैया लक्ष्मी देवी के स्वर में गाई, भाई मलार तो सुन ली आपने। और पता है, अरे कहीं झूलवे से पेट भरतु है कम? अरे भैया झूला झूलवे में तो बड़ो आनंद आते है। सावन रोज ऐसो सावन को महीना बनो ही रे वे, तो और हरियाली आती रे। सुन लिये रोहतास को गायो भयो ये मलार।

0: जा मलार के संग भैया, आनंद तो खूब आए रहो है, पर काम की बात, अरे मौसम की बात जरूरी जानकारी है। तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में मध्य से घने बादल छाए रहेंगे। तेज हवा, आंधी तूफान और बिजली कड़कवे के संग हल्की से मध्यम बारिश हैवे की संभावना हते। और भैया हम तो आप ये कहें कि बरसात के समय में कोई बिजली के खंबा या काई के भी इधर उधर आप जो है काई पेड़ के नीचे मत रुकियो, मत पसूनने बांधियो, और बस समय के अनुसार चल रहे हैं भैया। देखो अब कार्यक्रम को समय है चले हो है संपन्न है, तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, और इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
3: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
2: श्री योगी ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, क्रांतिकारियों, सैनिकों और संविधान निर्माताओं राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने भारत के प्रतीकों, युवाओं, गरीबों, आदि आबादी, किसानों के लिए नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित मंच देकर आदर्श पेश किया है। ये तिरंगा यात्रा उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेज भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन काकोरी में 9 अगस्त 1925 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद

0: बाद राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने खजाने को अपने कब्जे में लेकर आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां प्रदान की थीं। श्री योगी ने आमजन का आह्वान किया कि हमारे गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, प्रति घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
3: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाने वाला जनपद है।
0: कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है।
4: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है प्रयागराज से लेकर के यहाँ का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जाएं।
0: सभी जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाराबंकी से हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट।
5: कल सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का श्री लोदेश्वर धाम मंदिर पहुंचने का सिलसिला आज रविवार से शुरू हो गया है। सुदूर जनपदों से श्रद्धालु जय बम भोले के घोष लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी उनका नगर क्षेत्र में

0: स्वागत कर एक बड़े कैंप का आयोजन किया गया है, जहां उनकी जांच और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी से परवेज अहमद।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक आज हुई। बैठक में श्री राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आगामी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम अयोध्या की परंपरागत रीति रिवाज और साज सज्जा के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
2: रामलला है, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे, उनका

0: आयोजनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम अयोध्या की परंपरागत रीति रिवाज और साज सज्जा के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
1: रामलला है उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: कल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ब्रजांचल में आजकल श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। शिवालयों में भारी अपार जन समूह देखने को मिल रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि श्रद्धालुओं का ध्यान रखें, उनको कोई कष्ट ना आए, कष्ट ना हो, ऐसी विचारधारा के साथ उनके साथ मृदु व्यवहार करें। ब्रजांचल में नंदगांव, बरसाना, बलदेव, मथुरा, वृंदावन, दूर दूर से जो श्रद्धालु अपने मन में भाव लेकर आते हैं, वो भाव उनके साथ हम साझा करें, सजो कर रखें और उनका ध्यान रखें। और अब आज के कार्यक्रम शाम सुहानी की, आपका प्रेम हमें हमेशा से मिलता रहा है, उसी क्रम में मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणिता, प्रिंस, लाडला टोक और इनके परिवारजन, पांडर कबड़ा से अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री और धनुश्री, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके परिवारजन, मजनू टीला से कमल बलूजा, मधु, सागर, सतना MP से उमंग, मलिक, आकांक्षा और इनके परिवारजन, जिला कासगंज गंजडुडवारा से अफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया, सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू मैडम,

महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार, कृष्ण नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना वुशरा, गुलिस्ता नंदिनी और अंजलि, धमदाग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, अरुषि, औषिका, आदित्य और अंजलि, शेख रेडियो श्रोता भोईबाड़ा पेंट से शेख चांद, शेख नुमान, शेख आदनान और जाकिया, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी और बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, गांव दुलापुर से। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आशा भोसले को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था उमराव जान। और अब एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हुदा गुमला झारखंड से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, बलहार शाह से सूरज लोढ़े, प्राची और एकलव्य, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टल विट्ठल, सुषमा, परिधि, मायरा और इनके परिवारीजन, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतलमाला सुरलकर, आरती, गौरी, ओम कुमार, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, करणवीर हाउस बुछो कैनचिया से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कुमार जोड़ा और करणवीर, कुलदीप और दमन अभिजीत, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप, और ये हमें संदेश मिला है कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप और बेगम अफजल का, नागपुर महाराष्ट्र से। आप सब सुनना चाहते हैं ये

आप सुन रहे थे उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फिल्म मोहरा में। अब हमें संदेश मिला है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा और दीपाली वर्मा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। शिव मंदिर हरिनगर, जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष और इनके परिवारजन। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, अंडार नाथघाट छत्तीसगढ़ से। संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, नसवाला चौक मलकापुर से। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

उदित नारायण, अलका याग्निक, शान और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था तेरे नाम। इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे यशुदास को फिल्म दादा में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

देशगान कार्यक्रम संपन्न होता है। आज आपने समवेत स्वरों में कुछ देशगान सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सावन को आने दो फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने सावन को आने दो फिल्म के कुछ गीत सुने। आवाजें थी यशुदास और सुलक्षणा पंडित की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
5: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
2: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगा

0: के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM, IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास

0: आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाए।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म सिलसिला में, और आइए अब सुनते हैं आंखें फिल्म में लता मंगेशकर को।

आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था हर दिल जो प्यार करेगा। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये

0: भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसेटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
0: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता फॉलोड बाय अडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णु भट्ल कृष्णवेणी of the renowned Vishnu Bhatla sisters, and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6. She was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashwani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music, and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, श्रीमती सात्विका मोहन is accompanied on violin by श्री ओ राजशेखर, on मृदंगम by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Shrimati Satvika Mohan apne gayan ka aarambh Tyagraj ki ek kriti se kar rahi hai, jo raag Hamsad Dhwani tatha Adi Taal mein nibadh hai.
1: Shrimati Satvika Mohan begins her vocal recital with a composition of Tyagaraja Swami in the raag Hamsad Dhwani set to Adi Taal.

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ थरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापु ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापु ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू कंडचापुताल।

0: इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। शी वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कंसर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा एंड ब्रॉट टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा, ऑलवेज।

0: चीयर फॉर भारत, भारत माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय।
2: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver, and 9 bronze across various sporting